फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी सागर है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी सागर है। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए प्रतीक्षा करते हैं थोड़ी सी देर।

0: नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए शामिल हों अर्चना में। शुरुआत कर रहे हैं समूह स्वर में इस मातृ वंदना के साथ।

अभी श्रोता भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। आपको बताना चाहेंगे, अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। कुछ पुराने फिल्मी गीत आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। वक्त आपका जाना पहचाना सुबह 6:40। 7 बजे आप कार्यक्रम सुबह सुबह सुनेंगे और 7:05 पर कृषि चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम

0: कृषि संकेत होगा। कुछ फरमाइशी गीत आपकी नजर किए जाएंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत में सुबह 7:20 पर। सुबह 7:45 का वक्त संगीत सरिता का रहेगा और 8:15 श्रोता सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत। आज सुबह 8:30 सुनिएगा चित्रपट संगीत। सुबह 10:00 आप जिले की चिट्ठी सुनेंगे और 10:05 पर चिट्ठी से लोकगीत कार्यक्रम होगा। 10:30 ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनिएगा। शाम 5:02 पर लेकर आएंगे युववाणी कार्यक्रम और 5:30 पर आप संगीत सरिता सुन सकते हैं।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: मैं सागर हूँ, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
0: शाम 6:30 श्रोता सदाबहार गीत सुनेंगे और शाम 6:45 पर होगा लोकरंग कार्यक्रम। रात्रि 8:00 का वक्त होगा चित्रपट संगीत का और 8:20 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। फरमाइशी फिल्मी नक में रात 9:00 श्रोता मन चाहे गीत में सुन सकते हैं। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार होंगे और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना।

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। मुख्य गायक स्वर है सुरेश वाडकर का।

पक्षीराज गरुड़ को अपनी पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनाते हुए काकभुशुंडी ने बताया कि शायद ही कोई ऐसी योनि होगी जिसमें उन्होंने जन्म नहीं पाया। अपने अनेक जन्मों में उन्होंने योग, जप, तप, दान, पुण्य सभी कुछ किया। कलयुग में उनका जन्म अयोध्या के एक शूद्र कुल में हुआ। उस जन्म में वे मन, वचन और कर्म से भगवान शिव के आराधक थे। शिव भक्त होने का उन्हें मात्र अभिमान ही नहीं था, बल्कि वे अन्य सभी देवताओं की निंदा भी करते। कलयुग में धर्म के विरुद्ध आचरण होता है। डींग मारने वाले पंडित और दंभी व्यक्ति संत कहलाते हैं। स्त्री वश में होकर व्यक्ति मदारी के बंदर की तरह नाचता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब लोगों के गुण समझे जाते हैं। शिष्य गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता। स्वयं गुरु भी ज्ञान दृष्टि रहित होता है। तनिक से लाभ के लिए लोग गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। ये है कलयुग की विशेषता।

अभी श्रोता श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। 6:40 हुए हैं। समय है कुछ पुराने फिल्मी गीत आप तक पहुंचाने का। कार्यक्रम आपका जाना पहचाना भूले बिसरे गीत। सबसे पहले आइए सुने ये गाना फिल्म पैगाम से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया है इस गीत को। पंडित प्रदीप की ये रचना है जिसे संगीतबद्ध किया है सी रामचंद्र ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: दिल एक मंदिर, ये फिल्म का नाम है जिससे अगला गाना आप सुनेंगे। शंकर जयकिशन के संगीत में ये बोल हसरत जयपुरी के हैं और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। आइए सुने ये गाना।

दिल दिया दर्द लिया। आप सुनते हैं इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गाना, जिसको लिखा शकील बदायूनी ने और संगीत बद किया नौशाद ने। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आइए अब सुनते हैं दिल दिया धड़ दिलिया फिल्म का ये शीर्षक गीत।

0: नौजवान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: और आइए अब सुनते हैं फिल्म अनाड़ी से ये गाना, जिसे लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया है। शंकर जयकिशन का संगीत है और शैलेंद्र के बोल।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की हमें इजाजत दीजिए। थोड़ी ही देर बाद श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्य

0: कि शुरू में वो लक्ष्य हमें बहुत दूर दिखाई दे, कभी कभी असंभव भी दिखाई देता है, लेकिन असंभव तो कुछ होता ही नहीं है। हार वास्तव में संघर्ष छोड़ने वालों की होती है, ना कि हारने वाले की। हारने से कई बार ये लगता है कि इससे क्या फायदा हुआ, लेकिन हारने से भी बहुत फायदा होता है और उससे हमें कई बार बहुत अच्छा अनुभव और प्रेरणा मिलती है। और ये जो प्रेरणा होती है वो हमें संघर्ष जारी रखने और चुनौतियों का सामना करने की बहुत शक्ति देती है। बात हम लक्ष्य की करें तो संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वास्तव में कोई लक्ष्य होते ही नहीं है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि जीवन में हमें क्या करना है, क्या बनना है, क्या पाना है, किस चीज से बचना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लक्ष्य है, लेकिन जीवन भर वो ना अपने उस लक्ष्य के बारे में कहीं लिखते हैं, ना किसी को कुछ बताते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए भी होता है कि शायद वो अपने लक्ष्य को साझा करते इसलिए घबराते हैं कि दुनिया कहीं उनका मजाक ना उड़ाए। या तो डर या खुद पर भरोसे की कमी, इसकी वजह से कई बार हम अपने कई लक्ष्य अपने अंदर रखते हैं। मगर इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भली भांति जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। वो उसके बारे में लिखते भी हैं, दूसरों को बताते भी हैं। वो जीवन में क्या पाना चाहते हैं ये साझा करते हैं, कैसे पाना है, कब तक पाना है, इस बारे में भी विचार मंथन करते हैं और कभी कभी दूसरों से सलाह भी लेते हैं। और ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों को ये सिखाते हैं कि कैसे लक्ष्य निर्धारित करके, प्रयास करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कई बार सफलता पाने पर आपसे लोग पूछते हैं कि आपने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया। वास्तव में जब किसी ने किसी लक्ष्य को पाने का सोचा होता है तो वो उसकी दिशा भी निर्धारित कर लेता है और कितने प्रयास लगेंगे ये भी निर्धारित कर लेता है, और ऐसा करने से ही वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। अगर पहला कदम ही गलत दिशा में उठा लिया जाए तो मंजिल से दूरी और भी बढ़ जाती है। इसलिए हम अपने लक्ष्य को पहचाने जिससे उस तक पहुंचने का हमारा जो मार्ग है वो आसान हो जाए। आज सुबह सुबह बस इतना ही। इजाजत दीजिए साहिबा को इस प्रोग्राम से। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी सागर के कार्यक्रमों के साथ। अब वक्त हो रहा है कृषि चर्चा पर आधारित हमारे कार्यक्रम कृषि संकेत का। प्राकृतिक खेती की जानकारी, इस विषय पर केंद्रित रहेगा आज का ये अंक, जिसमें विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस के तिवारी।
1: अब हम थोड़ी सी अपनी खेती जो रासायनिक खेती हो रही है उससे हटके चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में जो हमारी रासायनिक खेती हो रही है उस रासायनिक खेती का परिणाम ये हो रहा है कि तमाम सारी जो है वो बीमारियां मनुष्यों में जो कभी नहीं होती थी, और खासकर कि गांव में हम देखते थे कि पहले लोग गांव में अपना स्वस्थ जीवन जीने के लिए शहरों से गांव की तरफ पलायन करते थे, वहां स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन अब चूंकि रसायनों का असंयमित और असंतुलित रूप से प्रयोग का परिणाम ये हो रहा है कि हमारा जो कुछ भी उत्पाद मिल रहा है खेती से इस समय, वो सब हमारे स्वास्थ्य को फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको जरूरत है कि हम जहर मुक्त खेती करें, और उस प्राकृतिक खेती जिसका नाम दिया गया है इसकी बात अभी सब जगह हो रही है। और हम जहां कहीं भी किसानों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर किसान के पास 2 एकड़ भी जमीन है तो आधा एकड़ हिस्से में अपनी प्राकृतिक खेती जरूर करें। प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम है, इसमें किसी प्रकार का कोई जादू नहीं है, ना कोई करिश्मा है, ना कोई वैज्ञानिक। ये वो पद्धतियां हैं जो हमारे बरसों पहले लोग किया करते थे। हमारे पहले की पीढ़ी जो है वो प्राकृतिक खेती ही करती थी, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक खेती करती थी, जहर मुक्त अन्न पैदा करती थी, जहर मुक्त सब्जियां पैदा करते थे और खाते थे, उसको खा करके 100 साल तक जीवन जीते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे।

0: लेकिन आज ये स्थितियां हैं कि रसायनों के असंतुलित और असीमित प्रयोग से हमारी खेती में जो कुछ भी उत्पाद मिल रहा है वो हमारे मानव स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। इसके लिए जरूरी है कि प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम है, प्राकृतिक संसाधन जो हमारे खेत में, हमारी जमीनों में, हमारे गांव के परिवेश में जो उपलब्ध है, उनका हमको भरपूर उपयोग अपनी खेती में करना है। प्राकृतिक खेती में किसानों को अपने खेत पर बीज उपचार करने से लेकर के कीड़े मारने तक दवा सारी अपनी उसको स्वयं के अपने संसाधनों पर तैयार करना है। बीज उपचार करने के लिए किसान बीजामृत बना ले, और बीजामृत बनाने के लिए कोई कुछ बाहर से किसी चीज को लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देसी गाय का प्लास्टिक के ड्रम में गोमूत्र इकट्ठा कर ले, गोमूत्र इकट्ठा करने के बाद देसी गाय का गोबर इकट्ठा कर ले और थोड़ा सा उसमें चूना 50 ग्राम चूना मिला दे, प्लास्टिक का ड्रम ले ले, उसमें जो है वो 20 किलो गोबर और 20 लीटर गोमूत्र ये मिला ले और 50 ग्राम चूना मिला करके उसको ड्रम के अंदर रख दे छायादार जगह में, 2-3-4 दिन के लिए इसको छोड़ दे। सिर्फ सुबह शाम उसको डंडे से क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में सिर्फ 2 बार डंडे से, लकड़ी के डंडे से चला दे। आपका 1 हफ्ते के अंदर जो बीज उपचार करने वाला मटेरियल बन के तैयार होगा वो आपके बीज, अगर आप इससे उपचारित करते हैं तो आपके बीज को फफूंद से, बैक्टीरिया से, वायरस से, यहां तक कि निमेटोड जो सबसे सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म नुकसान देने वाला कीड़ा है, नुकसान करने वाला, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसान भाई बीज उपचार करने से लेकर के, बीज उपचार कर ले उसके बाद आप किसान जो हम खड़ी फसल में जरूरत होती है खाद डालने की, उसके लिए जीवामृत बना ले, बीजामृत बना ले, घन जीवामृत बना ले, और इनमें सब में वही चीजें लगनी है। जैसे किसान जीवामृत बना रहा है उसमें देसी गाय का गोबर, गोमूत्र और जो बेसन या कुछ दाल की जो फसलें होती है इनका, दाल का आटा और पुराने पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी, जो पुराने पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे किसान एक मुट्ठी मिट्टी लेता है उसमें मिलियंस अरबों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं लाभ देने वाले। आपने सबने भी देखा होगा कि कहीं गांव में आसपास कहीं अगर पुराना पीपल या बड़ का पेड़ दिखता है उसके नीचे आप चले जाओ, देखो उसकी जमीन इतनी आपको समृद्ध मिलेगी, इतनी ताकतवर जमीन मिलेगी, इतनी न्यूट्रिटिव मिलेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि लगातार पीपल और बरगद के पेड़ से पत्ते गिरते रहते हैं और वहीं डिकम्पोज होकर के अच्छी बढ़िया ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते रहते हैं। समस्या ये है कि हमारे खेतों में जो खेती कर रहे हैं, जिन खेतों में हम, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की बहुत कम मात्रा है। ऑर्गेनिक कार्बन एक तत्व है जिसकी मात्रा अगर एनालिसिस की जाए तो जो भारी काली जमीनें हैं उनमें भी बहुत कम देखने में मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम खेत में ऑर्गेनिक मटेरियल का उपयोग करें। और ये जो हमने कहा कि देसी गाय का गोबर और गोमूत्र और ये बेसन और ये दाल की जो आटा है, ये सब क्या हमारी, हमारे खेत में मिट्टी में तमाम सारे मिलियंस लाभदायक जीवाणु है, ये उनके लिए फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ है। जब हम इसको खेत में डालते हैं तो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु सबको खाद्य पदार्थ मिलता है, वो अच्छे मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं और अपना बेहतर काम करते हैं।
1: अभी आपने प्राकृतिक खेती की ये जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम कृषि संकेत में विशेषज्ञ थे डॉक्टर एस के तिवारी। और आइए अब प्रतीक्षा करते हैं प्रादेशिक समाचारों की, जिनका अनुप्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: आज कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी लेंगे बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। इंदौर में आज 21 देशों के मंत्री और विशेषज्ञों के साथ ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का होगा आगाज। प्रदेश भर में आज लगेगी नेशनल लोक अदालत। बिजली पानी बिल के सरचार्ज पर 100% माफी समेत कई विवादों के निपटारे का मौका। और एक तरफ आंधी बारिश तो दूसरी ओर चिलचिलाती गर्मी। प्रदेश के 13 जिलों में आज तेज तूफान का अलर्ट। रतलाम में 43.5 डिग्री पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पिछले दो दिनों में 97 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी की गई है। सरकार का कहना है कि 95% डिलीवरी अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए की जा रही है।
1: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। डॉक्टर यादव ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया।
2: शिक्षा नीति 2020 की बात कहें तो ये मध्यप्रदेश सरकार में सबसे पहले लागू हुई और ऐसे में सांदीपनी विद्यालय ये पूरे देश में मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया कि वे दो दिन का दौरा बना करके आए, हमारे सभी स्कूली शिक्षा के सांदीपनी विद्यालय भी देखे और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ मध्यप्रदेश सरकार मिलकर के काम करे।
0: प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बिजली बिल, चलकर, संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। इस महाकुंभ में देशभर के वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और मीडिया विशेषज्ञ हिंदी पत्रकारिता के भविष्य पर मंथन कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की संयुक्त पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 के इंडेक्स स्कोर के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और धात्री माताओं को आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां देने में 95% तक कवरेज हासिल की गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस उपलब्धि का श्रेय आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को दिया। उज्जैन के लक्ष्मण बाग परिसर में महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इसे मध्य प्रदेश भवन विकास निगम करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करेगा। इसमें प्रशासनिक ब्लॉक, 12 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, 50 सीटर कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर

कलेक्टर शीला दाहिमा और एसपी सुधीर अग्रवाल ने कुनो पहुंचकर हेलीपैड, चीता रिलीज साइट और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रदेश में अब तक 9,38,000 किसानों से 56,45,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी हो चुकी है। इसके लिए किसानों को 10,403 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। सरकार 2585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। भोपाल के सांदीपनी विद्यालय गोविंदपुरा में कक्षा पांचवी में पढ़ने वाले आराध्य पाराशर ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्त्री विजेता छात्र शामिल हुए थे। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। सलीमनाबाद के इमलिया गांव में करीब 3.35 लाख टन से ज्यादा सोने का अयस्क मिलने का अनुमान है, जो 50 साल की भूवैज्ञानिक खोज का नतीजा है। बड़ेरा और बचरबाड़ा में 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 3 बड़े डोलोमाइट ब्लॉक भी माइनिंग कॉरपोरेशन को दिए गए हैं। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। पहले दिन खटिया इको सेंटर में वन्यजीव प्रबंधन, बाघ इंसान सह अस्तित्व और आधुनिक वन प्रबंधन पर चर्चा हुई। प्रदेश पुलिस ने बीते एक हफ्ते में अलग अलग जिलों में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 83 लाख रूपये से ज्यादा के मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए हैं। प्रदेश के बीच से गुजर रही दो टर्फ लाइन और ऊपरी हिस्से में सक्रिय चक्रवाती हवाओं के चलते राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। कल 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच गया है। आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए, जिसके जवाब में केकेआर ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंदसौर में एनसीसी कैडेट्स को टीबी खत्म करने के अभियान में अपनी भूमिका के बारे में जागरूक किया गया। आगरमालवा जिले में नेशनल लोक अदालत के लिए 10 न्यायिक खंडपीठे बनाए गए हैं। झाबुआ में गर्मी के चलते पेयजल समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिला स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। सतना में नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 के खाली पार्षद पद पर उपचुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। डिंडौरी में कलेक्टर ने डैम घाट पर नाविकों की बैठक लेकर उन्हें सुरक्षा के जरूरी निर्देश दिए। धार में नगर पालिका परिसर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। गुना में मिलावटखोरी रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य पदार्थों की लगातार जांच और सैंपलिंग की जा रही है। सागर में मकान गणना का काम धीमा पड़ने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 5 जनगणना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रतलाम में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम ने अरिहंत परिसर और ऑफिसर कॉलोनी के नालों की सफाई कराई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी सागर है। 7:20 हुए हैं। वक्त है मन चाहे गीत कार्यक्रम का। आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों को लेकर हाजिर हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत फिल्म बेटी बेटे से। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत इस गीत के लिए।

जिसे सुनना चाहते हैं नेहरू चौक पैठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल और बेबी सिया जाधव। जालना शहर से ये अनुरोध है सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता का। ग्राम जाखौत से अनुरोध करता है शंभुदयाल, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा।

वो कौन थी। इस फिल्म में आइए सुने आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना मेहंदी अली खां, जी हाँ पूरा नाम राजा मेहंदी अली खां ने गीत लिखा और मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया। आपने अनुरोध भेजा, आप हैं राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से ये अनुरोध आया है। चंद्रेश कौहर, वंदना, मयंक, तन्वी, जयपाल, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा ने भी इसी गीत को सुनने का अनुरोध हम तक पहुंचाया है। शास्त्री नगर बीट शहर से अनुरोध करता है किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल। आइए सुने आप सबकी पसंद का ये गाना।

अगला गीत फिल्म कभी कभी से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत। और आप सबने फरमाइश पहुंचाई हम तक गीत सुनने के लिए। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह, ये फरमाइश आई है। ग्राम भेल खेड़ी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से धनराज बैरागी, सीमा बैरागी, किट्टू, खुशी और लक्ष्मी। किशनगंज बिहार से अनुरोध करता है रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के तमाम लोग।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: आइए अब सुनते हैं नक्श लालपुरी का ये कलाम, जिसे जयदेव ने संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर ने गीत को गाया। ये गीत आपके लिए फिल्म तुम्हारे लिए से, आप सबके अनुरोध पर। अंडार नादघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा। गांव खारिया ढाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया। ग्राम धरदई सरगांव छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता है चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत और कुमारी कृष्टि। आप सबकी पसंद का है ये गाना।

और श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी पेशकश के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं ये गाना फिल्म त्रिशूल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, यशुदास के स्वर हैं इस गीत के लिए। साहिर लुधियानवी ने गीत को लिखा है, खयाम ने संगीतबद्ध किया है। आपने सुनना चाहा है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, फारबिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार, पप्पू नैतिक, पीहू कुमार विमल, बाडीहाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, दिवांश और डब्लू, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल भाविया और प्रियांश देवांगन, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनें आप सबकी पसंद पर ये गाना।

अभी श्रोता मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपने फरमाइशी फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है, 7:45 हुए हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम संगीत सरिता का। सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं एक गजल जिसको लिखा गुलजार ने है और आवाज जगजीत सिंह ने दी है।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: ये हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: देखा न था।
3: ये है रूना लैला।

अभी श्रोता संगीत सरिता सुन रहे थे। आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। थोड़ी ही देर बाद यानी 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसका अनुप्रसारण किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए थोड़ा सा इंतजार करते हैं।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण

0: नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता सविंद्र अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसन स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने

0: के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमेरिका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
6: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का

0: आर्द्रपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। 8:15 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत का। इसमें आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं राम रति चौरसिया को।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और आइए अब सुनते हैं शकुंतला कुशवाहा को।

0: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
1: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
2: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
1: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
2: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
3: ये है सुमन वर्मा।

अभी श्रोता लोक संगीत सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। सबसे पहले सोहम की आवाज में लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म से ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रीतम का संगीत है और सईद कादरी के बोल।

0: आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: अब सुनते हैं सुखविंदर का गाया हुआ, जयदीप सहानी का लिखा हुआ और सलीम सुलेमान का संगीत बद किया हुआ ये गीत।

0: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
1: और अब जो गाना आप सुनेंगे उसे आवाज दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत विशाल शेखर का है। ये गीत आपके लिए फिल्म ओम शांति ओम से।

इन्हीं आवाज़ों यानी सोनू निगम और श्रेया घोषाल को सुनते हैं। जलीस शेरवानी के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत है और ये गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दबंग से।

आशिकी 2 ये फिल्म का नाम है, जिससे अगला गीत अरिजीत की आवाज में हमारे श्रोता सुनेंगे। गीत और संगीत है मिथुन का।

अब सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक को। जावेद अख्तर के ये बोल हैं जिसे संगीत से सजाया है शंकर एहसान लाय ने। यह है फिल्म कभी अलविदा ना कहना से गीत। प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश है, उसके बाद इस कार्यक्रम से हम अनुमति चाहेंगे।

और अब साहिबा को इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। तब तक आनंद दीजिए इस गीत।

दिल में उतरती आवाज अरिजीत सिंह की, इनकी गायकी का अंदाज भी अलग है। गदर 2 फिल्म का गाना आपने सुना, सईद कादरी के बोल थे, मिथुन का संगीत, और अब एक छोटा सा अंतराल।

सदन की स्थापना की थी। आपने गोरा, चुखेरवाली, घरे बाहर जैसे कई उपन्यास लिखे। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है साथियों, जिसमें उन्होंने अपनी सशक्त कलम का परिचय न दिया हो, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास, नाटक या गीत। उनकी कुशाग्र बुद्धि ने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी साहित्य, दर्शन और संस्कृति को भी आत्मसात किया था। साल 1913 में उनकी कालजयी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे पूरे विश्व में विख्यात हुए।

0: परिणीता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें थीं। स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का मीठा संगीत और इसमें बात थी पीयू बोले, बहुत ही प्यारा गाना था ये। साथियों, ये पक्षी, इनकी परवाज, इनकी चहचहाहट, इनका सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। सच मानिए, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के साथ कुछ लम्हे गुजारिए ना, जिंदगी में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। अगला गाना हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए अब एक संदेश की ओर बढ़ जाते हैं।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

0: श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में सिंघम फिल्म का ये गाना था। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस छोटे से अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में अब बजेगा प्रीतम का संगीत, नीलेश मिश्रा के बोल, के की आवाज में वो लम्हे फिल्म का ये गाना।

ये संगीत है विशाल शेखर का, जावेद अख्तर के बोल हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें। बहुत खूबसूरत गाना, एंजॉय कीजिए कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर।

जावेद अली की आवाज़, प्रीतम का संगीत, समीर के बोल, नकाब फिल्म का ये गाना था। आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

दलित महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से

सन 1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

0: मजबूर।
1: सबसे दिलचस्प बात ये है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

सिंगरौली में अब बच्चे सिर्फ किताबों में ही आसमान नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। कलेक्टर गौरव बैनल की पहल पर उत्कृष्ट विद्यालय बैढ़न में 10 इंच का प्रोफेशनल टेलीस्कोप लगाया गया है। इस दूरबीन के जरिए छात्र अब चांद के गड्ढों, शनि ग्रह के छल्लों और गहरे आकाशीय पिंडों को करीब से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने किया। वहीं विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी सिंगरौली लगातार आगे बढ़ रहा है। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के निर्देशन में खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तय लक्ष्य के मुकाबले बड़ी राजस्व वसूली की है। जिले ने करीब 4,833 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सामने 4,681 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। खनिज संपदा के साथ साथ वन संपदा को लेकर भी जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। वन मंडल जिला यूनियन सिंगरौली ने वर्ष 2026 के तेंदुपत्ता संग्रहण की सभी तैयारियां पूरी करनी हैं। इस साल जिले के लिए 1,77,000 से ज्यादा मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 400 रुपए प्रति सैकड़ा निर्धारित की गई है जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा। इधर जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सिंगरौली को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। वर्ष 2020 के आईपीएस अधिकारी शियास के एम ने जिले के एसपी का पद संभाल लिया है। इससे पहले वे बालाघाट के हॉक फोर्स में पदस्थ थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर समन्वय पर जोर दिया। नई पुलिस टीम के सक्रिय होते ही अपराधियों पर कार्रवाई

तेज हो गई है। बरगवां थाना पुलिस ने हाल ही में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने एक युवक के साथ मारपीट, नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पर्स लूट लिया था। वहीं प्रशासन

0: मजदूर दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। परियोजना और टाउनशिप के करीब 20 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान श्रमिक अधिकारों, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुए। अलग अलग स्थानों पर सेफ्टी टॉक और वेलनेस कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इसी क्रम में एनटीपीसी विंध्याचल में फायर सर्विस वीक भी मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक बॉम्बे डॉकयार्ड अग्निकांड में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को याद करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ी पहल की गई है। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने वृहद वृक्षारोपण के लिए एमपीआरवीवीएन के साथ एमओयू किया है। एनसीएल ने वर्ष 2026-27 में प्रदेश के खदान क्षेत्रों की 208 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर करीब 4,70,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब बात जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने की। जिले में खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी है। ये शिविर 4 जून 2026 तक चलेंगे। जिले के अलग अलग विकासखंडों और जिला मुख्यालय में फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल, कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैढ़न के राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में फुटबॉल और क्रिकेट शिविर लगाए गए हैं, जबकि खो खो का प्रशिक्षण काइट राइज पब्लिक स्कूल और बास्केटबॉल का प्रशिक्षण कन्या महाविद्यालय बैढ़न में दिया जा रहा है। अंत में बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया है। 71 वर्षीय लालमन को आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत आयुष्मान कार्ड मिला है, जिससे उन्हें अब हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं छोटे व्यापारी शिव नारायण को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण मिला है, जिससे वे अपना काम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह रीता कुशवाहा ने भी पीएम स्वनिधि की मदद से अपनी बंद दुकान को फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला किसान सत्य कुमारी जायसवाल के नेतृत्व में महिलाएं मिलेट उत्पादन और मार्केटिंग से आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: ये आकाशवाणी सागर है। 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत।

चिट्ठी से लोकगीत सुनमे बारे हमारे सभी बिन्ना भैयारों के लाने हमारी राम राम पहुँच जाए। भैयारों कार्यक्रम होगा हो आपको मनपसंद शुरू और लेके आ गए हम आपके मनपसंद के लोकगीत सुनवावे आपकी चिट्ठियाँ जो ना आपने भेजी हैं। और जब पहली चिट्ठियाँ शामिल कर रहे हैं महादेव घाट अमलेसर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने ए लोकगीत को सुनवो चाहू है। पुरवेआऊ काली तिगड्डा से श्याम रेखवा, लक्ष्मी, विक्रम, बादल, विनय, वंदना, खुशबू, कीर्ति, टक्कू, भूमिका, विराज, दक्ष और इनके परिवार के सभी सदस्य ए लोकगीत को व्हाट्सएप के माध्यम से फरमाइश पहुंचाई है। अमलतास अमरीन होम्स कटरा भोपाल से भैयारों के नाम है प्रेम भाई भारतीय, भैरव प्रताप भारतीय, लोकेंद्र प्रताप भारतीय और इनके परिवार के सभी सदस्य ए लोकगीत को व्हाट्सएप के माध्यम से सुनवो चाहो है। न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर गीता सामनानी, शाश्वत भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललताबाई भारतीय और इनके परिवार के सदस्य और ए लोकगीत को व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँचाइए जा फरमाइश। ग्राम बाया तहसील रहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारतीय, कोसाबाई भारतीय, महेंद्र भारतीय, सचिन भारतीय, तरु भारतीय और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो इन सबकी पसंद पर सुन रहे अपन जो लोकगीत एक हों गा रही हैं शीला देवी।

भैया हरो, अबे अपन ने शीला देवी को गाव भाव जो लोकगीत सुनो और अगले लोकगीत के लाना जो चिट्ठी आई है ग्राम हनौता पारिक्षत पोस्ट ईश्वरवारा जिला सागर से लिखवी बारी भैया हरे हैं दिनेश पटेल, हजारी पटेल, महेश पटेल, जयराम, हरनाम, कमलेश, तुलाराम, संजू, नैन्सी, मयंक, सुहानी, स्वाति, मोहित, कंचन, दीपक, गोमती, ममता, रोशन, राजकुमार, प्रीतम, सालकराम, श्रीराम, दयाराम और समस्त हिनौता ग्रामवासी। ये लोग गीत को सुन वो चाहो है खैरा नाका खुरई से गणेश सेन, रघुवीर सेन, सलाम सेन, ज्ञानबाई सेन, रीता सेन, भाग्यश्री, विवेक, प्रशांत, पूनम, जमुना प्रसाद, आशीष, निधि, सरिता और इनके सभी मित्र मंडली। ये लोग गीत को व्हाट्सएप के माध्यम से फरमाइश पहुंचाई है आभार माता रोड रामटोरिया तहसील घोवारा जिला छतरपुर से। भैयानों के नाम हैं बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत, हरिराम, दशरथ, शीला भाभी, दसोदा भाभी, भागवती, ममता, उमा देवी, सहारा, श्री रामकली, अंश, अंशिका, मोहिनी, गोलू, नीरज, खुशबू, आयुषी, शिवांगी, करिश्मा, काजल, करण, भारती, आरती और इनकी परिवार के सभी सदस्य। तो इन सबकी पसंद पे सुन रहे अपन सुषमा शर्मा को गाओ जो लोकगीत।

0: हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: भैया रोज संदेशों की बात कार्यक्रम में फिर से आपको खूब खूब स्वागत है। और अगले लोकगीत के लिए चिट्ठियाँ पहुँचाई है सुर्खी से। भैयारों के नाम है दीपेश सेन, दिनेश, मुकेश, नीतेश, संस्कार, लक्ष, निहाल, दीवानसी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये लोकगीत को सुन वो चाहो है नेपाल पैलेस सागर से। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रॉबिन, सेवा, सेवांश, यश, अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कठौनिया, सुजीत, पंडित रमाकांत दुबे और इनकी पूरी मित्र मंडली। ए लोकगीत को सुन वो चाहो है व्हाट्सएप के माध्यम से आदर्श रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड गौरझ हमार जिला सागर से। कुंदन लाल चौरसिया, निर्मोही, अंबिका प्रसाद चौरसिया, विवेक कुमार, बीरेंद्र, देवव्रत, कार्तिक, आराध्य, नैवेद्य, मनोज चौरसिया, मानस चौरसिया और इनकी साथी। तो इन सबकी पसंद पे सुन रहे अपन सुंदर लाल अहिरवार और उनके संगी साथियों को गाओ जो लोकगीत।

भैयारो अबे अपन ने सुनू सुंदरलाल अहिरवार और साथियों को गाव हो जो लोकगीत और अगले लोकगीत के लिए नजर चिट्ठिया पहुंचाई है छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता कविता गुप्ता नेहा गुप्ता कोमल गुप्ता और इनके परिवार के सभी सदस्य यही लोकगीत को सुनबो चाहू है ग्राम मोहली तहसील बांदरी जिला सागर से पंडित शिव नारायण तिवारी रश्मि तिवारी नंदनी तिवारी सत्यम तिवारी शिवम तिवारी नितिन तिवारी महिमा माहिम और इनकी परिवार के सभी सदस्य ए लोकगीत को सुनबो चाहू है ग्राम कुमेरिया भटोली पोस्ट पसारी तहसील गड़ाकोटा से भैयारों के नाम है मिहिलाल खैरैया नन्नू महाजन छैला रामकरण बाबूलाल जगदीश और इनके परिवार के सभी सदस्य और ए लोकगीत को सुनबे के लाने व्हाट्सएप से फरमाइश पहुँचाई है म्यांमार के ढाना सागर से भैयारों के नाम है भगवान दास नामदेव ग्रीस ओम गौरी गुड्डू चौराहा सतीश चौरसिया रामू सिवाय मोनू हर्ष लक्ष राजकुमार अर्पित नामदेव नन्ने भाई सेन प्रमोद सेन विट्ठल ठाकुर भीकम सेन मगनलाल नामदेव और इनके पूरी मित्र मंडली तो इन सबकी पसंद पर सुन रहे अपन शकुंतला शुक्ला को गाव जो लोकगीत

मैया और अभी अपने जो लोकगीत सुनो शकुंतला शुक्ला को गाओ भाव और ए लोकगीत के संगे कार्यक्रम को समय पूरा हो रहा है सो हमें देवा गया राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे चिट्ठी से लोकगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी सागर है। आइए सुनते हैं ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को उनकी अपनी बहन सैलू साहू की हाथ जोड़ के राम राम। हाँ बहनों, भगे आओ रेडियो के लगा। और अगर रेडियो के लगा नहीं बैठ पा रही हैं, हमें पता है कैसे अब हमारी बहुत सी बहनें रसोई घर में काम में लगी रहती हैं सवेरे सवेरे, तो रेडियो लगा धल्ली कैसे हम आ गए आपसे बतकाव करवे। और बहनों जैसो आप उन्हें जानते ही हो कि हमारे कार्यक्रम में मौसम के अनुसार बतकाव लेके आते हैं, जिनमें हमारी बहनों तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ अच्छे अच्छे बतकाव अपन कर सकें और उन तक अच्छी अच्छी बातें पहुँच सकें। तो बहनों जैसो अपन जानते ही हैं कि अब गर्मी अच्छी खासी पड़ने लगी है तेज, और ऐसी गर्मी में अपन देखते ही हैं कि पानी की परेशानी होने लगा। तो आज अपन चर्चा कर रहे कार्यक्रम में कि अपन हो पानी की बचत करो चाहिए। और बहनों देखो, जैसा ही मई को महीना शुरू होते है वो गर्मी खूब ही तेज पड़ने लगा थे, और गर्मी के तेज हो गई से पानी को खर्चा भी बढ़ जाता है। अब पानी को खर्चा ऐसा बहनों कि देखो, जैसे अपन ठंड में तो एक बाल्टी में सपल ली, मतलब गर्मी ज़्यादा लगन से अपन के तना को डाल ली एक दो मग्गा, और फिर घरों में कूलर भी चलत सो कूलर में भी पानी डालने पड़त, सो ऐसा बढ़ जात पानी को खर्चा। तो गर्मी आई और पानी को खर्चा भी बढ़ गया। और जब पानी खूब खर्च कर भी से गर्मी में अपन देखते हैं कि पानी की कमी आ जाते है, और हम सभी जनों को पानी की परेशानी उठाने पड़ा थे। तो पानी की परेशानी से अगर अपन को बचने हैं तो पानी की बचत करवो बहुत ज़रूरी है। और आज बहनों नहीं, अब भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या है गिरते भूजल स्तर की। आज सभी जने पानी की समस्याओं को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। और बहनों अगर ऐसा ही स्थिति रही तो पानी भी राशन जैसो लेन लगा के मिले। देखो बहनों हम गलत तो नहीं कह रहे, कैसे जब अपन ऐसा ही पानी बगरा उतरे हैं बहा उतरे हैं तो एक दिन तो कमियां है। और देखो उसे जैसे बस कारो है कि ठंड को मौसम है तो उते अपन तनक मनक पानी की परेशानी हो सुनेंगे अखरत, मनो गर्मियों में तो अपन हो अखरत है और अब भी अपन किन ले। और एक ही दिन आप जैसे नल आवे बारे नलों में पानी आ रहा है और दो ही दिन नल नहीं आवे, सुतरा ही तरा ही सी मच जात पानी की, ए बिना नल नहीं खोली अब कैसे सपरे हैं कैसे बासन धोवे। हमारी बहनों से चर्चाएं जैसे उनमें मिलाई जाती हैं। तो बहनों अगर ऐसे ही अपन बकरा उतरे तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे राशन में अपन लेन लगा थे

राशन बटवेगी, ऐसे कछु दिनों में पानी मिल है। और अगर हम आज सजग न भए तो आवे बारी जोन पीढ़ी है वह हमें माफ न करे, तो हम सबको जो पढ़ लेने पर है कि हम पानी की बचत करें। पानी की एक बूंद भी प्यासे व्यक्ति के लाने बहुत कीमती होते। यदि हम में से हर व्यक्ति पानी बचावे को प्रयास करे तब ही हम पानी की बचत कर पाएं। और बहनों देखो, जहाँ हम बात इसे कह रहे हैं, कैसे बहुत से जनों की सोच जा रहे थे कि हम अकेले कर भी ऐसे का हो जाए, कहीं हम अकेले बचा लें तो कौन पूरा कुआ भर जाए। तो ऐसी सोच अपन हो नहीं रखने, अपन को खुद पानी की बचत करने और अपने जो घर में परिवार में छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उनको भी पानी की बचत कर वो सिखाने, और दूसरों को जो अपने आसपास हैं उनको भी अच्छे से समझाने कि पानी की बचत कर वो कितनों जरूरी है। कैसे, जब कई भी जात है कि जल है तो कल है, माने अगर पानी है नहीं है बिल्कुल से तो अपनों भी जीवन संभव नहीं है। तो जल को महत्व तो हमारे जीवन में बहुत है, जी को वर्णन अपन नहीं कर सकत। कैसे, देखो सवेरे से उठते ही से रात के सोवे तक करवे वाले सभी कामों में हमें पानी की जरूरत पड़त है, और ये सब काम बिना पानी के संभव नहीं है। अब भी काम ऐसे बने, देखो बंसरा से अपन मुँह धोबे सुई पानी चाने, सफर भी पानी चाने और न लत्ता धोबे पानी चाने, आ फिर जैसे सफर खोर के फुरसा तो भाई सब रोटी पानी बनावे, अपन जैसे ही रसोई घर में घुसी सो पानी चाने, माने सवेरे से उठते से रात के सोबे तक बिना पानी के कछु नहीं होते है। जब आत अपन सभी जने जाना थे कि ये काम बिना पानी के संभव नहीं है, इसे पानी की बचत करवो हम सब के लाने बहुत जरूरी है। सभी जनों को जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण अभियान चलात भाई बच्चों में बड़ों में जागृति ले आने पर है कि पानी की बचत घर के हर छोटे छोटे कामों में अपन हो करने हैं, और बहनें भी हमारी कर सकती हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकती हैं। अब वो कैसे बहनों, तो देखो जैसे अपन देखा थे कि आजकल जो जी नहानी रहती हैं जहाँ से अपन नहाते हैं उधर फोहारा लगे हैं और नल लगे रहते हैं, तो अपन का नल चालू कर लो, बाल्टी नीचे धरी नल चालू है, मग्गा से पानी बगरात रहा है, अब जो पता ही नहीं चल रहा हो कितना तो पानी बगाड़ रहा हो। तो ऐसे में अपन सपरा समय सिर्फ बाल्टी में पानी एक बाल्टी पानी ले लेवे और फिर उसे सपरें तो अपन पानी की बचत कर सकते हैं। अब रसोई घर में हमारी बहनें काम करती हैं, तो रसोई घर में भी हमारी बहनें बहुत से पानी को बचा सकती हैं। कैसे कि देखो, रसोई घर में एक बाल्टी धर लेवे और बाल्टी में जैसे अपन ने सब्जी धोई, दाल धोई, चावल धोए और फिर जब अपन देखा थे कि धोवे के बाद जो पानी निकलत है उसको बाल्टी में धर लेने, और वही बाल्टी में जब अपन बासन मांजते हैं और बासन धोवे के बाद को भी जो पानी निकलत है वो भी वही बाल्टी में रखा जावे, तो जब जो पानी इकट्ठा हो जाए है तो अपन फिर जैसे अपने घर में जो पेड़ पौधा लगे हैं अपन वो पानी उन पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। तो जितने में जो अपनो साजो पानी लग तो पेड़ पौधों में डारे में वो अपने वो पानी को उपयोग हो जाए है, तो अपन ऐसे में भी सादे पानी की सही पानी की बचत कर सकते हैं। और भी बहनों कछु उपाय हैं ऐसे पानी की बचत करवे के, कि जैसे जौन से अपन बचा सकत पानी। देखो जैसे अपन बड़े बड़े महानगरों में देखते हैं घरों में रहते हैं जो नालियाँ रहती हैं उनको भी अपन जैसे पानी के गड्ढा बना लेवे और इकट्ठा करो जाए, फिर वो गड्ढा से पानी साफ करके अगर पेड़ पौधों की सिंचाई के काम में लाओ जाए तो भी अपन पानी की बचत कर सकते हैं। जो पीवे वाले साफ पानी है उसकी बचत कर सकते हैं। अपन देखा थे कि जैसे घरों में मोहल्लों में जो सार्वजनिक पार्क हैं के स्कूल हैं के अस्पताल हैं के दुकानें हैं बड़ी के मंदिर हैं, इन सब जगह अपन देखा थे कि नल लगे रहते हैं, तो जैसे उनकी टोंटी खुली हैं या टोंटी जैसे टूट गई हैं, तो ऐसे में जाने अनजाने हजारों लीटर पानी बेकार बह जाते हैं और ऐसे में पानी की बर्बादी होते। तो ये पानी की बर्बादी हो रोकवे के लाने लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर है, जिनमें लोग पानी व्यर्थ न बहावें और लोग पानी की बचत करें और दूसरों को भी पानी की बचत करवे के उपाय बतावें। कैसे, अपन देखा था बहनों के मंदिर में गए के कहूँ गए तो अपन ने पियो पानी के हाथ धोए और नल चालू छोड़ दो, तो ऐसे में भी पानी खूब बगड़ा थे। अब बात आते बहनों, जैसे घरों में सप्लाई से जो पानी आउट है पीवे बारो अपन पानी भरा था खर्चा को, तो नल आ रहे हैं। अब नल आवे के बाद बहनों घरों को पानी भरगा, ओके बाद सट के खुली डरी हैं कि नल खुली डरी हैं, तो ऐसे में भी बहुत सो पानी फालतू बह जाते। तो ऐसा न करें, जैसे आपके घर को पानी भरगा है तो नल बंद कर देवे, जो भी जो फालतू पानी बह रहा है वो न बह पावे। ऐसे बहनों कपड़ों को धो समय भी लंबे समय तक नल खुलौने छोड़ें, जितने जितने पानी

की अपन जरूरत पड़ जावे तो नल चालू कर करके उपयोग कर जावे। अब अपने घर में देखा तो मैंने बहुत सी जगह का पानी को रिसाव हो रहा हो, एक एक बूंद पानी टपक रहा हो, सो अपन का सोचते कौन ज्यादा यार रिस रहा हो, एक ही एक बूंद तो टपक रहा हो और बेनो एक ही एक बूंद में क्यों बाल्टी पानी बह जाता है। तो अगर आपके घर में कहूँ नल से पानी रिस रहा है तो उनमें सुधार जरूर करा लेवे जिमें जो पानी बर्बाद न जावे। अब बेनो देखो अपन देखत कई बार के अपन प्यास लगी अपन ने गिलास भर के पानी ले लो और दो घूंट पियो और बाकी को फेंक दो, तो ऐसो अपन नहीं करने, पीवे वाले पानी के गिलास में उतना ही लेने हैं जितो अपन पीने हैं जिमें अपन बाद में वो पानी फेंकने न पड़े। तो इस तरीके से भी अपन पानी की बचत कर सकते हैं। और बेनो ये सब उपाय अपना के अगर अपन पानी की बचत कर हैं तो जो अपन गर्मियों में पानी की परेशानी ज़्यादा होते अपन उन परेशानियों से बच सकते हैं। तो बेनो हमें तो पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से हमारी बहनें जरूर पानी की बचत करें। और बेनो देखो चर्चा

तो वहाँ बहनों हम बिल्कुल नहीं भूल रहे मनोरंजन, और आपको मनोरंजन करवा रहे हैं ई लोकगीत के माध्यम से, और ईखों गा रहे हैं नथु राम बनकर। और बहनों जे भी पानी ही को महत्व बता रहा है कि बूंद बूंद पानी कितो कीमती है, तो चलो सुनाते हैं जो लोकगीत।

मैंने जो अपन ने लोकगीत सुनो नथुराम बुनकर को, और इनने भी पानी की महत्ता बिल्कुल ऐसे बता दी जैसे अपन उन्होंने जानते ही हैं कि भैया पानी कितना कीमती है। और बेनोबाद जो लोकगीत की बात अब सुना लिए थे जी जरूरी संदेश।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बिना संदेशों की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और बहनों, अब चर्चा कर रहे हैं कि देखो गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो ऐसी गर्मी की छुट्टियों में बाल बच्चे क्या करें। तो बहनों देखो, गर्मी की छुट्टियों को इंतजार सभी बच्चों को रहते, और अब बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। और बच्चों के लाने तो छुट्टियों को मतलब है अपनी मर्जी से वक्त गुजारवो। अब चाहे बहनों टीवी देखने हो, चाहे वीडियो गेम खेलने हो, चाहे और कौनों खेल खेलने हो, और उनकी पूरी दिनचर्या बदल जाते हैं। और ऐसे में बहनों जो न अपनी बहनों के छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, तो माँ के लाने छुट्टियों के दौरान बच्चों को व्यस्त रखवो आसान नहीं हो। कैसे? बच्चा उस समय मस्ती के मूड में रहता है कि अब कौन पढ़ाई की चिंता है, कि जो पढ़ने हैं, कि जा लिखाई करने हैं। और ऐसे में हर घंटा में मनोरंजन को साधन चाहने कई माँ बाप तो बच्चों के लाने उनकी शरारतों से बचवे के लाने उनको अलग अलग तरह तरह की क्लासों में डाल दिए थे। क्लासों में ऐसे बहनों के कौनों जैसे नृत्य सीखने हैं या कौनों और दूसरी कछु चीज़ें सीखने हैं, तो उनकी जो अलग अलग क्लासें लग रही हैं, तो उनकी रुचि के अनुसार उन क्लासों में डाल दिए थे। और ऐसे में बच्चा हों लगन लगा थे कि उनके माँ बाप ने उनकी फुर्सत और सुकून यानी गर्मियों की छुट्टियों को सब मजा किरकिरा कर दो, माने उनको सब मजा छीन लो। अगर आप अपने बच्चा की गर्मी की छुट्टियों को मजा किरकिरा नहीं करवो चाहत, और उनको टीवी कंप्यूटर या वीडियो गेम की लत से भी बचाओ चाहत हो, तो आपको गर्मी की छुट्टियों को मज़ेदार बनावे के लाने अपनी तरफ से कछु अलग प्रयास करने पर है। बच्चों को गर्मी की छुट्टियों को आनंद उनको अपनी रुचि को काम करवे में आहुत है। और अगर आपको अपने बच्चा को कछु नौ सिखाने हैं, तो आपको तैयार होने पर है। और अगर आप तैयार हो, तो आपकी मुश्किल फटाफट से दूर हो जाए। मैंने बच्चों को पेड़ लगावो बहुत खुशनुमा एहसास होते। कैसे? पेड़ के बारे में बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं, पेड़ कैसे लगाए जाते, फिर कैसे बड़े होते हैं, फिर इनमें फूल कैसे आते हैं। कई बार अपन बच्चे ऐसे सवाल करने लगाते हैं, तो उन्हें एक अलग एहसास होते। तो हम हर पल प्रकृति से कछु ने कछु सीखत है, तो इन छुट्टियों को फायदा उठा के आप भी अपने बच्चा को प्रकृति के संग जोड़वे और कछु नव सीखवे को मौका देवे। सबसे पहले आप बच्चा को पौधा लगावो और उनकी देखभाल करवो सिखावे। मैंने इसे फायदा जो हुई है कि अपने हाथ से लगाए पौधा को बड़ो हो तो देखें, तो जीवन के बहुत से सबक जैसे जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण अपने आप आहे उनमें। और आप अपने बच्चा को जैसे और दूसरे काम में भी करवा सकते हैं, जैसे कछु रंगीन खिलौना बनावो सिखा सकते हैं, या फिर रंगीन चित्रकारी भी करा सकते हैं। ई किलाने रंगीन कागज के जैसे खिलौना बनावो है सिखावें, और उनकी रचनात्मकता को बढ़ावें। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार चीज़ें सिखावें, जैसे बच्चों की रुचियों हों उन्हें खार भी खिलाने। मैंने दोपहर को समय अच्छो रहते। कैसे? दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगा थे, इसे घर से बाहर निकलने में परेशानी होते। तो यदि आपके बच्चा को गावे बजावे को शौक़ है या कोनो वाद्य यंत्र बजावे को शौक़ है, तो उनकी ई शौक को भी निखारवे में आप मदद करें। मैंने एक बड़े कागज पे आयताकार आकृति बना देवें, फिर बच्चा से बनावे कहें। ऐसो करवे से भी बच्चा को दिमाग तेज हुई है। पहली बार ठीक से नहीं बने, मन भी धीरे धीरे बनावे को प्रयास करें, कोशिश जरूर करें। और ऐसे बहुत से काम हैं जो इन बच्चों से कराए जा सकते हैं। ऐसे कामों से बच्चों की जिंदगी को सहज और सरल बनावे में मदद मिला थे, और संग संग बच्चा को खुद पे भी आत्मविश्वास बढ़ा थे। इन कामों से बच्चों को मानसिक विकास

भी होत है और अपनी जिम्मेदारी को भी एहसास होत है। मैनू आप इतनो करके देखें, आपके बच्चा की छुट्टियां सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि यादगार बन जाए हैं। और ऐसे में मैंने अपन देखा था कई बार बहुत से बच्चों की लिखावट अच्छी नहीं रहती, और जैसे अपन बार बार कहे हैं उनसे कि बेटा देखो अच्छे से लिखेंगे जी, मैं लिखावट अच्छी आवे, तो विजय के लिए अब हमें पढ़ाई करने हैं, हमारे पास समय नहीं रहता है। तो ऐसे छुट्टियों के समय में आप बच्चा की लिखावट की सुधार कर सका था, और उनकी लिखावट में सुधार करावे में अगर आप थोड़ी सी आगे आके प्रयास करो तो उनकी लिखावट भी सुधर जाए। और जब जो छोटे छोटे से काम में आप बच्चा को सहयोग करो तो बच्चा को भी उन कामों में लगाव हुई है और भी करवे की कोशिश करें, तो मैंने उनकी छुट्टियां बेकार भी नहीं जा पाएँ और बच्चा अपने मन के अनुसार काम करके बच्चा अपने खुश छुट्टियों को सही आनंद ले पाएँ। तो मैंने उनके घर में छोटे बच्चा हैं उन सब के लाने अपन जी सब चीज़ें सिखा के उनकी छुट्टियों मजेदार बना सका थे। और बहनों एक बार फिर मनोरंजन की तरफ ले चल रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला राजपूत को गाओ जो लोकगीत।

मैंने अपन ने अब जो लोगी सुनो ईखों गा रही थी शकुंतला राजपूत। और मैंने अब अपन बात कर ली हुए गर्मियों में जो मुख्य समस्या अधिकांश देखने में आते हैं लू लगवे की। तो अपन हो जैसे अपन देखते हैं कि पहले ही अपन कह रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज पड़ रही और ऐसी गर्मी में घर से बाहर निकलबो तकलीफदायक हो सका है। कैसे बहनो तनक सी लापरवाही अगर अपन बरते तो लू लगवे को डर रहे थे। डर का बहनो जा समझो कि लू लग जाते। और कई बार लू के लक्षणों को पहचानने में भी अगर भूल हो जाए तो मरीज बहुत बड़े संकट में आ सकत है। लू लगवे पे हमारे शरीर की जो तापमान नियंत्रण करने वाली प्रणालियाँ काम कर वो बंद कर देती हैं और शरीर को तापमान असामान्य रूप से तेज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो मरीज हैं अपने मन से दवाइयाँ खा लेते हैं। तो ऐसे समय में बुखार उतरने वाली कोनो भी दवाई अपने मन से बिल्कुल नहीं खाने। कैसे बिना जानकारी के कोनो भी दवाई खाओ मरीज के लाने परेशानी को कारण बन सकता है। इस बिनो ऐसी गर्मी के दिनों में अपन हो लू से बचवे के लाने कई और उपाय अपन हो करो चाहिए जी में अपन लू से बच सकें और लू के शिकार न हो पावें। जैसे मैंने हमने बताई कि आपको कि लू लगवो बहुत खतरनाक होते अपने लाने। तो अपने स्वास्थ्य के लाने तो हम जाई के हैं कि कोनो भी बीमारी होवे बचाओ बीमारी को सबसे बड़ा उपचार है। लू अपन को लगे ई के पहले लू से बचवे के उपाय करवो ज्यादा जरूरी है। और भी उपाय बहनों ज्यादा यहाँ से कठिन नहीं है, साधारण से उपाय हैं जो उपाय अपना के अपन लू को बचाव कर सकते हैं। जैसे बहनों गर्मियों के मौसम में अपन पानी खूब पियो चाहिए जिनमें शरीर में पानी की कमी न हो पावे। घर से बाहर निकलने के पहले पर्याप्त मात्रा में पानी या फलों को रस या फिर मठा या कोई भी पेय पदार्थ जरूर पीवे। पीवी के बाद ही घर से बाहर निकलें। मैंने जैसे अपन हो पैदल चल के घर से बाहर जा समय धूप से बचवे के लाने आप चाहें तो सफ़ेद गमछा को उपयोग कर सकती हैं या चाहें तो छत्ता भी ले सकती हैं। माने केवे को मतलब जो कि अपन हो धूप से बचाव करने हैं तो जो भी साधन आपके हिसाब से उचित लगे वे साधन आप अपना सकती हैं। मैंने दोपहर में बाहर जावो अगर बहुत जरूरी हुए और अगर ज़्यादा समय में भीषण गर्मी में आपको बाहर रहने हुए तो बीच बीच में थोड़े थोड़े समय के लाने छायादार स्थान पे कछु देर तक आराम जरूर कर लेवें और कोनू पेय पदार्थ पी लेवें जिमें अपन हो लू लगवे की शिकायत न हो पावे। जब भी घर से बाहर निकलें तो जो देख लेवें कि धूप बहुत ज़्यादा है तो वही हमने पहले बताई कि अपन हो गमछा या अन्य दूसरे साधन को उपयोग करने हैं। बिनो इतने उपाय अगर अपन ने कर लिए हैं और उसके बाद भी लू लग जावे तो अपन हो कोनो भी लापरवाही नहीं बरतने, अपन हो घरे कोनो इलाज नहीं करने और सीधे अपन हो डॉक्टर की सलाह ले लेने हैं जी में मरीज को कोनो परेशानी न हो पावे। मैंने ऐसे समय में गर्मी के समय में अपन जो भी ध्यान रखें थोड़ा सा पहनावे को कि जो अपन कपड़ा पहन रहे हैं वे सूती पहने जिमें अपन हो कपड़ों की पहनावे की तरफ से भी कोनो परेशानी न होवे तो ढीले ढाले कपड़ा पहने। और सबसे बड़ी बात बहनों कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने हैं जी में अपन हो शरीर में कोनो प्रकार से पानी की कमी न हो पावे। तो बहनों इन उपायों अपना के

0: अपन लू से बचाव कर सकते हैं। और अब बेनो घड़ी कह रही है आपरो से हो रही है विद्यालय भी की बेरा सो हमें देव आज्ञा राम राम।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था मिर्ज़ा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा कलाम है ये, आवाज भूपिंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में, फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी, और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर की गाए फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों, हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें, 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही। और बहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों, ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना। कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज़ भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज़ नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहाँ बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहाँ खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है, और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूं ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहाँ तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहाँ तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा, कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है और पंछी के माध्यम से कवि ने ही दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है बाबुल।

जी तो दोस्तों मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर जो कि 1974 की फिल्म है उसका एक गीत है, कौन सा बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका हैं, शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहाँ तक गीत की बात है, लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है। जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं, और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हों लेकिन जो प्यार है, बीच का प्यार है, वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान

मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता हुआ ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने को कहती है। आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा ये गीत, जिसे संगीत में ढाला है राम लक्ष्मण ने।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करिते छि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों

0: वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ। ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है, सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: चांद सूरज के
1: जाऊं पिया के देश पुरतिया में सज धज के
0: चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के।
2: एक बेमिसाल शायर
3: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
2: एक शानदार शख्सियत
4: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
2: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
4: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
2: कुछ बेमिसाल किस्से
4: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
2: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जाने कितनी उड़ान बाकी है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में आप सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम एक साल।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूं का लिखा गीत। तलत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिले नादा।

तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ है ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हम बता दें, आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी साधी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं वो है आदमी।

मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ कुछ आज मेल खा रही है और यही एक शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुनना, समझना, पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सफर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है। वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब? मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को, जो गीत आज हमने चुने हैं, किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मुंह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहां नृत्य कर रही हैं उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आज़ाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियां इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है और कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज़्यादा मिलें तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफ़र। हमारे साथ इस सफ़र में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने

जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और ये आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटा पटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल बिस्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है, चोटी।

0: जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनार है,
1: जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनार है,
0: जहाँ

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक संगीत में प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है। मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: बैठी पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो
0: कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे।

तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने। आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी, जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है, कि आपके साथ चलने? बिल्कुल चलने, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तकिए से लिपट कर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सूने मन को छू लिया, जैसे बरसों से की धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो

दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन सफलता की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं, उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ। सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

0: और इस गीत में आपको शब्द मिलेगा पुकार।
1: जमुना की
0: याद कीजिए, फिल्मी पर्दे पर कौन कौन है।

हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और शुभ लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीरबाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज़ है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज़ है और उनका साथ अमीरबाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक हैं, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी। और देखिए, आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया अब कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज़ क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज़ थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज़ नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था। और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।

भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया।

का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबह लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक, आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटों भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। फिल्म सफर के साथ मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चुन चुन करती आई चिड़िया, जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ही गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहां मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजना रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है, जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री

बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं। फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे? अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं फिल्म नोटबुक से लिए गए इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है विशाल मिश्रा और कमाल खान ने।

0: दर्शन रावल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का था और फिल्म थी लूडो। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब।
0: राज्यपाल आर एन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा,
2: शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। बंगाल में सत्ता का नया सूर्योदय हुआ है और यहाँ पर जंगल राज का अंत हुआ है, गुंडागिर्दी का अंत हुआ है। निश्चित रूप से इस अवसर पर बंगाल के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। कृपया से दोबारा सुन लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सरदार धाम परिसर का दौरा भी करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अपने संसदीय क्षेत्र गुना का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। यह ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। देश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के अधिभार और 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा रहा है।
3: अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: वहीं रायसेन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने के निर्देशन में आयोजित इस अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद और चेक बाउंस जैसे राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। आज के लिए 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें नमन किया है। आगरमालवा जिला जेल एवं वृद्धाश्रम में कल आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में वृद्धजनों को स्वास्थ्य, पेंशन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। जबलपुर में जिला अस्पताल विक्टोरिया और सरकारी संस्था पार्थ के संयुक्त तत्वावधान में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया कल 10 मई को नीमच में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
5: नमस्कार। से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करिते छी जे विधि द्वारा स्थापित ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।

0: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के

0: पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की ज़रूरत है।

0: मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम गंगा जमुना, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद साहब की धुन।
1: होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

फांसी लगी है तो करजवामा खटक होई बेकरी, फांसी लगी है तो करजवामा खटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवामा कसक होई बेकरी। थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन थाक, तिनक तिन थाक दिनक दिन थाक, तिनक तिन थाक। आँख मिल जाई है सजनिया से।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: मनचाही गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मनचाही गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुँचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था लैला मजनू।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है डाक।
1: मेरे दिल में आज

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंद स्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
0: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
0: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
0: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
0: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
0: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियादे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: नित्यानंद स्वामी, आज मेल लेट थे क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तो सारे के सारे डाक गांव में बंट जाने चाहिए थे।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी, तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही

0: ये बड़ा उद्दंड और शरारती था। जहां देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया। सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई सिंगारम, क्या हाल चाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो, हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई सिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कहां रहे? अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: सिंगारम सिंगारम, उधर देखो नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त,
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी।
2: अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम सिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते।

0: जिस शिवकामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
1: वरना क्या होगा?
2: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
0: लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
1: सिंगारम, ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
2: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
0: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहां? देखना ये सिंगारम के

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने, तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए, और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए, 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए, और ये रहा कूपन।
1: बेटा मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह भगवान की कैसी लीला है। अच्छा आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ, मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है, आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या

0: तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
1: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
0: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ आओगे ना बेटा?
1: आऊंगा माँ जी।

0: अरे जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओहो समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा, नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारक? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम।
0: अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है यार। अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा, कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।

0: बदमाश शिंकारम खड़ा है। अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो?
3: अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
3: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
3: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है?
2: देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा?
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकूंगी।
2: अच्छा, ये बात है?
0: छोड़
2: दे,
4: चेहरा तो बन गया, तुझे मैं छोर समा डालूंगा।
2: अरे मारा, दागी मैं मार डाला। अरे बचाओ, बचाओ।
4: कहाँ कोई नहीं बताएगा तुझे, दिन भर पड़े एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है। तेरी ये हिम्मत, बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
2: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
4: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चलो हम घर का रख दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने?
2: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
5: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
5: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
5: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
5: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस

0: महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं और वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
1: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
1: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
1: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितनी सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब, ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है, लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
2: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
1: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
2: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
1: अरे ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
1: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
2: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
1: मैं लाता हूँ। दवाई?
2: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
1: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
2: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
1: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए, आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
2: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं, जरा जरा मेरे पास आओ।
1: लो माँ।
3: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया, हिंदी अनुवादक थे पीएस कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।
2: पूजी

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।

0: और ये हिंदी गाना।
1: ओ, पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी।
2: जी,
3: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: हाँ।
3: और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
2: क्या बात है,
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी।
3: जी,
2: तो हम तब से बात शुरू करें।
3: जी,
2: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला?
3: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे।
2: जी,
3: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
2: हाँ।
3: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
2: वाह।
3: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें फिर नाम क्या रखे।
2: हाँ।
3: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके।
2: जी, जी, जी।
3: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
2: हाँ।
3: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला दातारन ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
2: वाह वाह
3: जी।
2: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
3: पहला शो 1975 14 अप्रैल
2: जी,
3: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
2: क्या बात है
3: जी,
2: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
3: मुहूर्त माना
2: क्या बात?
3: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
2: क्या बात है
3: जी।
2: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी?
3: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
2: हाँ, हाँ,
3: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा सांगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा सांगा, छोटे बच्चे भी पप्पा सांगा कुणा। मुझे याद है, छोटी सी किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
2: जी।
3: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी, 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको? तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोना से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई। अच्छा, मुझे बोली अच्छा। तू मेरे लिए गाओगी? तो बोला हाँ जरूर गाओगी। बहुत मजा आया उससे, बच्चों से लेकर।
2: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
3: जी,
2: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
3: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां, ये इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
2: बिल्कुल, जो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें

होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं, उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है, तो फिर भी

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत, मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव, गिरगांव में
1: हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे सब।
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति, दिवाली, सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी, जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की

0: जरूरत महसूस नहीं थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
1: जी जी।
0: गाने तो पसंद थी मेरी, तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा।
0: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
1: अच्छा।
0: तो इसीलिए जाना हुआ।
1: हाँ।
0: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
1: अच्छा,
0: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
1: जी, जी।
0: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
1: संगीत शारदा।
0: जी, जी। तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई।
1: अच्छा।
0: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी, तो पुरुष के गायक के लायक थी और हाइट भी अच्छी थी, तो मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, नारद का रोल किया स्कूल में। तो स्कूल
1: की ये महिला विश्वविद्यालय,
0: महिला विश्वविद्यालय नहीं, वो स्कूल की बात कर रही हूँ।
1: अच्छा।
0: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
1: अच्छा।
0: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के, बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे साथ, बहुत मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था।
1: क्या बात है,
0: बहुत मजा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्यपद जिसकी एक लाइन आप सुना
0: जरूर सके? जरूर।

0: वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती, पुरुष लोग
0: तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
1: राइट, राइट।
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
1: इस
0: नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक न्यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी, पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे। अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है, नहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है।
0: हाँ।
1: और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
0: हाँ।
1: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया और मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने
0: जी,
1: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
0: हाँ।
1: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई। और घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
0: हाँ।
1: और बहुत अच्छी तरह

0: से वो मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब जिजिक होती है हाँ, कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी
1: अच्छा,
0: बच्चों को हाँ, तो 62 में मैंने एमए किया फिर
1: वाह,
0: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ
1: अच्छा
0: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी रुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली प्रमिला जाब गाने गाइए कुछ हाँ, फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या, हमने चलेगी
1: दौड़ेगी
0: जाऊंगी कूदते जाऊंगी, तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा,
1: क्या बात,
0: और 2 बेटियां एक 4 साल की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से
1: हाँ हाँ।
0: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
1: जी जी,
0: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है
1: हा?
0: ऐसा पूछते इतना उनको भी याद नहीं थे उनके अच्छा। गाने ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे, बहुत मजा आया टूर में उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं,
0: मराठी में गाने थे
1: जी जी।

0: लिए।
1: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
2: घूमी
1: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
2: नहीं, सबसे पहले
1: वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
2: ज्यादा तो जी
1: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ,
2: गए। फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
1: जी
2: प्रमोटर अगली बार, तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
1: जी, जी।
2: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
1: अच्छा,
2: ईस्ट अफ्रीके का।
1: हाँ,
2: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था ना, तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
1: हाँ,
2: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं।
1: हाँ,
2: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गा। तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
1: जी, जी।
2: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज।
1: हाँ,
2: तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
1: अच्छा।
2: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
1: अच्छा।
2: दम मारो दम।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
1: जी, जी।
2: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
1: अच्छा।
2: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस किया उनको।
1: जी, जी।
2: इतने बड़े, बहुत बहुत ही बड़े सर, सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है, इधर उधर इधर ऐसा घूमते हैं, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
1: जी, जी।
2: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए छूट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि आपने तीन चार गाने गा के ये लोगों सामने से सुनते बैठू, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे में। रफी साहब को,
1: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ?
2: ड्यूएट नहीं गाया,
1: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे
0: हाँ।
1: क्योंकि ये क्या है,
0: मतलब टीका टिप्पणी की आप जो
1: टीका टिप्पणी की
0: जी, जी, जी, जी।
1: वो मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई
0: हाँ।
1: उसकी वजह ये है कि लोगों की टीका टिप्पणी मतलब ये अब 3 घंटे स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी।
0: अच्छा,
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें। तो ये जिनको मालूम नहीं है कि इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां है, तो लोग क्या हाँ वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी हाँ। लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी।
1: लोगों ने कहा कि अब तू खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अच्छा। कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस
0: अच्छा।
1: जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए
0: हाँ,
1: थे
0: हाँ, हाँ।
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में।
0: अच्छा,
1: मेरी सब सहेलियां मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है।
1: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया,
1: तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: हूँ। क्या बात
1: है। हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ।
1: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो
0: हाँ।
1: वो प्रमिला दादा का गाना लगता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले
0: जी,
1: गाने
0: जी।
1: अभी नई आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली हाँ, एक तक हाँ, जाती हाँ। तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का
0: हाँ।
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
0: क्या बात है
1: भेजे।
0: अच्छा,
1: कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
0: जी,
1: साथ
0: जी,
1: गाए, लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए बजाता है, मुझे भी अच्छा लगता
0: हाँ।
1: है
0: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक का।
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोह मोह के धागे दम लगा के रहेशा, इस फिल्म
1: दम लगा के रहेशा उसका
0: गीत, लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
1: हाँ, मोह मोह के
0: तो और इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें हाँ। प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं, किसी
0: नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना है?
1: तो अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है, मतलब शब्दोच्चार या कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी तरह से, तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप
1: नॉट नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो।
0: जी जी,
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं
0: गाऊं,
1: ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में
1: गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव,
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा हुआ असली नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौड़े में।
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल बहुत ही सीखना कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक
0: जी,
1: लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं, तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज नॉट, मैं अलग गाती हूँ वो बहुत अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ। बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत

0: वो ऐसी ही आनी चाहिए
1: जो ओरिजिनल है पहले वो तो गाओ
0: हाँ। नकल नहीं आती उसमें
1: जी,
0: लेकिन
1: जी, जी।
0: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती
1: हाँ।
0: है और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता
1: हाँ, हाँ।
0: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
1: बिल्कुल सही।
0: तो ये जो बड़े बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में
1: जी जी
0: वो क्यों करते थे इतना,
1: बिल्कुल
0: ऐसे गाते थे ना।
1: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र,
0: श्री रामचंद्र।
1: तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
0: एक शो किया बड़ौदा में।
1: अच्छा,
0: हाँ बड़ौदा में। मन्नदा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे
1: हाँ।
0: तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
1: हाँ।
0: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है
1: जी, जी।
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है
1: हाँ।
0: तो फ्लैट लगेगा और
1: जी,
0: भाव
1: जी।
0: नहीं आएंगे उसमें हाँ। तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है किसी के आवाज में। तो मैंने मन्नदा को पूछा कि मन्नदा ये कैसा लाने का अपने आवाज में
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसे आघात करते जाओ।
1: अच्छा।
0: और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके।
1: क्या बात,
0: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला
1: हाँ।
0: कि ज्यादा नहीं करना
1: हाँ, हाँ।
0: लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में बहुत ही
1: अच्छा।
0: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी जी,
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है
1: हाँ।
0: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में
1: जी जी,
0: बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी
1: हाँ।
0: ये शील सजणे सजने माझाच पाठी।
1: बिल्कुल, उनके लिए टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत बहुत तीन बार हुआ ठीक, चार बार हुआ इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं
1: उनको
0: बराबर करके लाइन में।
1: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें,
0: हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी जी।
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर Number 54 the जिसे मॉड्यूलेशन
1: हाँ, हाँ.
0: For the key, उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है
1: जी जी जी।
0: Number 54 the house of the bamboo door हो बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला ला ला ला ला झुलवित राहील पापा पापा तुला ने मला। नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: उनका तो क्या
1: वाह वाह। मन्नदा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं
0: जी जी जी।
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है
0: हाँ।
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने जिनको कहा जाए जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं ऐसे उनके कई गाने।
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं।
1: बहुत से
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में वो उस पे बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है मेरे प्यारे वतन।
1: वाह
0: बहुत अच्छा, थोड़ा सुना था।

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा
0: लिखावटी गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा है, पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ।
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है। तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है
0: जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
0: जी जी,
1: हाँ,
0: हंसते जख्म जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
1: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब भी उनके मिलने के बाद जहाँ ही मिल गया,
0: क्या बात है
1: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
0: क्या बात,
1: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त के रेजर वेजर कुछ नहीं था, स्ट्रेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
0: अच्छा।
1: घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी, मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था। तो बोला नहीं, मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
0: अच्छा।
1: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: अच्छा।
1: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
0: अच्छा।
1: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
0: ओहो।
1: उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था।
0: हाँ,
1: तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो।
0: हाँ,
1: फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे।
0: हाँ,
1: तो ऐसे सब होके भी उन्होंने ऐसे एक इंसिडेंस है।
0: हाँ,
1: ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
0: हाँ, हाँ,
1: वो मैं लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी भाग्यशाली आप हैं।
1: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
0: जी, जी, जी।
1: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए।
0: जी।

0: कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए,
1: हाँ।
0: फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे उनका,
1: हाँ।
0: साथ मिला
1: जी, जी।
0: उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए,
1: हाँ।
0: बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
1: जी।
0: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का
1: जी।
0: वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं, कभी कभी चढ़ कर, तो मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह।
0: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के,
1: हाँ, हाँ।
0: उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात, परिवार की बात चली है
0: जी।
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
0: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी,
1: अच्छा,
0: शो में,
1: हाँ,
0: शुरू,
1: हाँ,
0: से,
1: हाँ,
0: मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्त हुआ, मैं कंट्रोल्स कर रही हूँ,
1: अच्छा,
0: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना, अच्छा, वो छोटी थी दोनों,
1: हाँ, हाँ,
0: तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी,
1: अच्छा,
0: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए,
1: बचपन से ही उन्होंने आपको उन्होंने गाते
0: देखा,
1: देखा
0: तो उन्होंने
1: तो वो भी गाती आप...
0: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि
1: कशा
0: क्यों आए ऐसे नहीं, और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे,
1: क्या बात,
0: बड़ी बेटी एकदम हमारी माँ है, वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
0: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट
1: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा?
0: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलम चपलम उस पे डांस भी होता था मेरे शो में, ऐसे सब डुएट गाने हम लोग ने, तो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे, हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद
1: आता। यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं?
0: अरे बापरे,
1: रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है महासटेली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
6: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: सुनिए,
7: कहिए,
9: सुनिए एक खुशखबरी,
7: कहिए ना।
9: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए
1: प्रेशर घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख रेल मार्गों की क्षमता को बढ़ाना और भीड़भाड़ कम करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश भर में आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: हम

पढ़ाई सभी के लिए जरूरी है, लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं होता, और ये कोई मॉडर्न विचार नहीं है। ये विचार रविंद्रनाथ टैगोर के हैं, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारें मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महान कवि, लेखक और चिंतक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन शिक्षा के क्षेत्र में है। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार शिक्षा बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का विकास करनी चाहिए, उसकी बुद्धि, भावनाओं, कल्पना शक्ति और शरीर का। टैगोर जी कहते थे कि बच्चा प्रकृति से सबसे ज्यादा सीखता है, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां कक्षाएं खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छाया में होती थी। बच्चे वहां गाते, खेलते, नाचते और प्रकृति को निहारते हुए सीखते थे। वो मानते थे कि जब बच्चा खुश और स्वतंत्र होता है, तभी उसमें असली सीखने की इच्छा जागती है। उन्होंने पुरानी रट्टा मार शिक्षा की बहुत आलोचना की। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को कारखाने की उपमा दी, जहां बच्चे मशीन की तरह तैयार होते हैं। टैगोर चाहते थे कि शिक्षा बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ाए, इसलिए उन्होंने संगीत, कला, नृत्य, हस्तकला और साहित्य को शिक्षा का अहम हिस्सा बनाया। टैगोर के अनुसार शिक्षक बच्चे का मित्र और मार्गदर्शक होना चाहिए, न कि डराने वाला। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे को संवेदनशील, स्वतंत्र और अच्छा इंसान बनाना है। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां भारत और विदेशों की संस्कृतियों का सुंदर मेल हो और पूरा विश्व एक परिवार बनकर रहे। आज के समय में भी टैगोर का शिक्षा विचार बहुत प्रासंगिक है। हमारे स्कूलों में बच्चे हैवी बैग और टेंशन लेकर के जाते हैं। टैगोर हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा का मतलब बच्चे को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना, उसकी जिज्ञासा को जगाए रखना और प्रकृति से जोड़ना है। टैगोर का मानना था कि सच्ची शिक्षा वो है जो मनुष्य को पूर्ण बनाती है, उसे स्वतंत्र सोचने की शक्ति देती है, पूरे विश्व के प्रति प्रेम सिखाती है और संवेदनशील बनाती है। इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं के और सलीम मर्चेंट की रूहानी आवाज में आशाओं से भरा ये गीत।

0: छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप दी गई। इसी तरह राज्य और केंद्र सरकार स्टूडेंट्स की पढ़ाई ना रुके और प्रोत्साहन के लिए उन्हें हमेशा सहायता राशि देती हैं। ऐसी ही भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम यशस्वी। इस योजना के बारे में और जानते हैं शिपाली मिश्रा से।
1: नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया मतलब प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना फॉर वाइब्रेंट इंडिया के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। यह योजना उन मेधावी छात्रों के लिए है जो ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति समुदाय से आते हैं। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के होनहार बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और देश के विकास में अपना योगदान दें। सरकार चाहती है कि कोई भी योग्य छात्र पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर ना हो। पीएमएसएसवी एक छात्र योजना है जिसमें कई छोटी योजनाएं शामिल हैं, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई के लिए, टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई के लिए, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना इसमें शामिल है। छात्रवृत्ति की राशि कक्षा 9वीं के छात्रों को 75,000 प्रति वर्ष मिलती है और कक्षा 11वीं के छात्रों को 1,25,000 प्रति वर्ष मिलती है। यह राशि ट्यूशन फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हॉस्टल फीस और अन्य पढ़ाई संबंधी खर्चों के लिए दी जाती है। टॉप क्लास एजुकेशन में और भी ज्यादा सहायता मिल सकती है, लेकिन बात यह भी है कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो। इसलिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी ये है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ओबीसी, एडब्ल्यूएस या एससी एसटी वर्ग से होना चाहिए, परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, स्टूडेंट कक्षा 9वीं या 11वीं में सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहा हो, लेकिन मेरिट के आधार पर चयन होता है। पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था, अब कई जगह पिछले क्लास के मार्क्स 60% या उससे ज्यादा के आधार पर चयन होता है। लेकिन आवेदन कैसे करें? तो दोस्तों, आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है। छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड और पिछले क्लास की मार्कशीट अपलोड करने होते हैं। समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में या आसपास कोई योग्य छात्र है तो इस योजना का लाभ जरूर दिलाएं। इसी के साथ मैं शिपाली मिश्रा विदा चाहूंगी, धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप शिपाली मिश्रा को सुन पा रहे थे जिन्होंने आपको योजना के बारे में बहुत जरूरी जानकारी दी। लेकिन ये योजना सिर्फ पैसा देने की नहीं है दोस्तों, ये योजना उन बच्चों को आत्मविश्वास देती है जो मेहनती हैं लेकिन संसाधनों की कमी से पीछे रह जाते हैं। इससे स्कूल ड्रॉप आउट दर कम होगी, लड़कियों की शिक्षा बढ़ेगी और देश में कुशल युवा तैयार होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा योग्य छात्र है तो उसे इस योजना का लाभ जरूर दिलवाएं, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो गरीबी और पिछड़ेपन को मिटा सकता है। सरकार ने संसाधन दिए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही तरीके से उपयोग करें। पीएम यशस्वी योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जो न सिर्फ व्यक्तिगत विकास करता है बल्कि पूरे देश को वाइब्रेंट इंडिया बनाने में मदद करता है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि अब किसी की पढ़ाई रुके नहीं, चलती रहे। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ए आर रहमान और श्रीनिवास की मिलीजुली आवाज में ये गीत।

दोस्तों, क्या आपने कभी फूल के बर्तनों के बारे में सुना है? कई लोगों को पता होगा और जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बता दें कि फूल के बर्तन फूलों से नहीं बनते, मतलब ये किसी फ्लावर से बने हुए बर्तन नहीं होते, ये बर्तन धातुओं से बनते हैं। तो हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी विरासत में हम आपको बताएंगे फूल के बर्तनों के विषय में, जो कि आज फिर से चलन में है। आज बीमारियां बढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने पीतल के बर्तनों में खाना बनाना फिर से चालू कर दिया है। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग फिर से बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। इसी तरह से फूल के बर्तन भी हैं, जो अभी से कुछ समय पहले तक सिर्फ परंपरा के तौर पर शादियों या फिर शुभ मांगलिक कामों में ही इस्तेमाल किए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के सतना जिले की उचहरा तहसील कांसे के बर्तन बनाने को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ से कांसे, पीतल, फूल धातु के बर्तन कई राज्यों के साथ विदेश तक जाते हैं। इन बर्तनों में हांडा, बटुई, बटुआ, लोटा, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच सभी शामिल हैं। ज्यादातर इन बर्तनों का उपयोग पूजा पाठ, शादी ब्याह जैसे शुभ काम और घरेलू उपयोग में किया जाता है। पूर्वजों के जमाने में ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों में लोगों के घरों में यही बर्तन पाए जाते थे। वहीं इन विरासत को आगे बढ़ाने का काम उचहरा तहसील के बर्तन बनाने वाले आज भी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ जानकार बताते हैं कि इन बर्तनों में खान पान करने से कई प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ये फूल की धातु बनती कैसे है, आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों, फूल टिन और लेड की मिश्र धातु है, पर इसमें कभी कभी तांबा या पीतल भी मिला रहता है। ये धातु उजली और स्वच्छ चांदी के रंग की होती है और इसमें रखने से दही या खट्टी चीजें नहीं बिगड़ती। भारत, चीन, मिस्र और यूनान जैसे देशों को फूल और कस्कुट जैसी धातुओं का ज्ञान बहुत पुराने समय से है और प्राचीन खंडहरों की खुदाई में इनके पात्र, हथियार और मूर्तियां भी पाई गई हैं। पश्चिमी देशों में फूल से मिलती जुलती मिश्र धातु को प्यूटर कहते हैं। एक समय फूल के पात्रों का उपयोग प्रतिष्ठा सूचक समझा जाता था और इनका निर्माण अनेक देशों और नगरों में होता था। भारत में फूल का अस्तित्व पीतल से पुराना है, यहाँ इसका उत्पादन व्यापक रूप से होता था, पर आज स्टेनलेस स्टील के बनने के कारण इसका उत्पादन बहुत कम हो गया है और दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। गांवों में भी फूल के बर्तनों का विशेष प्रचलन है और भारत के अनेक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल में इसका उत्पादन होता है। अच्छा फूल बेधा कहलाता है। साधारण फूल में चार भाग तांबा और एक भाग टिन होता है, लेकिन बेधा फूल में 73 भाग तांबा और 27 भाग टिन का होता है और कुछ चांदी भी पड़ती है। ये धातु बहुत खड़ी होती है और चोट लगने पर चट से टूट जाती है। इसके लोटे, कटोरे, गिलास, बहुत से बर्तन बनते हैं। फूल कांसे से बहुत मिलता जुलता है, पर कांसे से इसमें ये भेद है कि कांसे में तांबे के साथ जस्ते का मेल रहता है और उसमें खट्टी चीजें बिगड़ जाती हैं। फूल में 80% तांबा और 20% टिन रहता है। धातुओं के विभिन्न मात्राओं के कारण इनके रंग और गुणों में भी विभिन्नता पाई जाती है। नीली आभा लिए ये सफेद होता है। प्राचीन काल में गिरिजा घरों के घंटे इसी के बनते थे, बाद में और भी सामान बनने लगे। दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी में तो इसका उपयोग बहुत व्यापक हो गया था और उस समय या उससे पहले के बने अनेक सादे और सुंदर चित्रित प्याले, कलश, गिलास, सुराही, फ्लावर पॉट और थाल जैसे भी कई सामान पाए गए हैं। वहीं अगर हम कस्कुट की बात करें तो कस्कुट तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। कस्कुट के सामान भी वैसे ही बनते हैं जैसे फूल और पीतल के। दोस्तों, मध्य प्रदेश के फूल के बर्तनों को GI टैग भी मिला है। तो हमारी विरासत में आज इतना ही, और अब आपको सुनवाते हैं ऋचा शर्मा, महालक्ष्मी, वैशाली और शोमा की खूबसूरत आवाज में ये गीत। डुम डुम डुमक डम डम डमक डुम डुम डुमक डम डुम।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम युववाणी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम का आगाज करते हैं रोहित शर्मा के बोल से, आवाज और संगीत कृष्णा का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रोहित शर्मा के बोल, आवाज और संगीत था कृष्णा का। अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में, संगीत दिया है निखिल विनय ने।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर

0: कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं संगीत सरिता। अब आपको सुनवा रहे हैं जुनून एल्बम से ये गीत।

0: शान के गाए इस गीत के साथ ही संगीत सरिता का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए जुबिन नौटियाल, नीति मोहन की आवाजों में सुनिए जॉली एलएलबी 2 का ये गीत। जुनैद वासी ने इस गीत को लिखा है, चित्रंजन भट्ट का संगीत।

0: बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म का गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की। इस गीत की रचना की है अनजान ने और तर्ज बनाई है ओपी नैयर ने।
1: आपके हसीन रुख

और आइए अब आपको सुनाते हैं गदर 2 फिल्म का गीत, विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की आवाजों में। सईद कादरी के बोल हैं, मिथुन का संगीत।

0: गदर 2 फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: तराने नए पुराने।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में, आनंद बख्शी के गीत को सुरों में पिरोया है आरडी वर्मन ने और फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।
3: मैं सुनवा रहे हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म से। गीत संगीत रविंद्र जैन का, गायक कलाकार हैं यसुदास, वंशरी गुप्ता और हेमलता।

अब आपको सुनवा रहे हैं काला पत्थर फिल्म से साहिर के बोल। राजेश रोशन का संगीत है, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

अभी आप सुन रहे थे काला पत्थर फिल्म से साहिर के बोल। राजेश रोशन का संगीत था, गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।

आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

0: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
2: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आकाशवाणी सागर से। इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं गीत फिल्म से, प्रेम धवन की शब्द रचना है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज सुमन कल्याणपुर की।

जो मुझ में नहीं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं लल्लू राम कुशवाहा की आवाज में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लल्लू राम कुशवाहा की आवाज में ये लोकगीत, और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।

0: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
1: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
0: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
1: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
2: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770-43-22-97।
3: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक रंग कार्यक्रम। अब आपको सुनवा रहे हैं लखनलाल पटेल की आवाज में ये लोकगीत।

इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी

0: पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by...
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों बाद प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 7:10 से। शाम 7:20 से सुनिएगा खेती गृहस्थी पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:00 से। रात्रि 8:20 से सुनिएगा संगीत सरिता। समाचार संध्या का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 से। मन चाहे गीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:00 से। रात्रि 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 11:00 सुनिएगा हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, ये दोनों रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। श्रोताओं, हमारी कल की सभा आरंभ होगी 5:53 से। सुबह 6:05 से सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ सुनिएगा 6:30 से। भूले बिसरे गीत का आनंद लीजिएगा 6:40 से। चिंतन और विचारों पर आधारित कार्यक्रम सुबह सुबह का प्रसारण होगा 7:00 से। 7:05 से सुनिएगा कृषि संकेत, विषय है गहरी जुताई से लाभ, विशेषज्ञ हैं जीपी विश्वकर्मा। 7:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर का प्रसारण समय है 7:20 से। संयोजन व प्रस्तुति दीपक निषाद की, संकलन व निर्माण अदिति जैन का। संगीत सरिता लेकर हाजिर होंगे 7:50 से। समाचार प्रभात का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:00 से। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 8:15 से। बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा लेकर हाजिर होंगे 8:30 से। सुबह 10 बजे से सुनिएगा जिले की चिट्ठी, रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

कार्यक्रम मैं सागर हूँ। संगीत सरिता सुनिएगा शाम 5:40 से। सदाबहार फिल्मी गीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:30 से। लोकरंग सुनिएगा शाम 6:45 से। ग्राम सभा का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 7:30 से। रात्रि 8 सुनिएगा सुर्खियों में, ये कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात्रि 8 से। और रात्रि 8:15 पर सुनिएगा डगर विकास की, विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आकाशवाणी छिंदवाड़ा का योगदान रहेगा। रात्रि 8:30 से सुनिएगा चित्रपट संगीत और रात्रि 9 से मन चाहे गीत। रात्रि 11:10 पर कल की प्रसारण सभा का समापन होगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर, सोमवार को सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर में आयोजित होगा रजत जयंती समारोह, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: यह उत्सव सोमनाथ मंदिर की अमर विरासत को सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। यह समारोह वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले दर्ज हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर को दर्शाता है। साथ ही यह 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। सदियों से सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे लूटा गया, लेकिन हर बार भक्तों और शासकों ने इसे दोबारा बनाकर इसकी खोई हुई महिमा को वापस स्थापित किया। यह उत्सव इस महीने की 11 तारीख को मंदिर के शिखर पर होने वाले भव्य कुंभाभिषेक के साथ समाप्त होगा। इस अनुष्ठान में 11 पवित्र तीर्थस्थलों से लाए गए जल का उपयोग किया जाएगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशिद प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही आज से सुशासन, सुरक्षा और विकास के एक नए युग का शुभारंभ हो गया है।

0: बंगाल सच मर्द में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई।
1: सीएस 2028 में श्रद्धालुओं की सुगमता से स्नान के लिए छिपरा तट पर 29 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नवीन घाट निर्माण किए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह ने आज करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के किनारे पैदल भ्रमण करते हुए घाट तक पहुंचने के प्रस्तावित 30 मार्गों का चिन्हांकन किया। संभागायुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन घाट तक बनने वाले पहुंच मार्ग सुगम और सुव्यवस्थित हों। संभाग आयुक्त ने बताया कि
2: आज के दिन हमारे और हमारी टीम के द्वारा सुबह 6 बजे से निकलकर लगभग 6 किलोमीटर का एरिया जो है कवर किया गया है महाशत्रा के किनारे किनारे। और आज के भ्रमण का उद्देश्य है कि जो हमारे 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं, उन 29 किलोमीटर के घाटों तक श्रद्धालु किस किस पॉइंट से एंट्री लेंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं को सहूलियत भी हो और सभी घाटों का अच्छा प्रयोग भी हो और हमारी जो रोड्स हैं जो घाटों तक लेके आ रही हैं वो आसानी से श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचा सके। कुल लगभग 200-200 मीटर पर हम लोग एंट्रीज बना रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस अवसर पर श्री चौहान मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई 2100 किलोमीटर से अधिक होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य की 987 बस्तियों को लाभ होगा। प्रदेश भर में आज आयोजित लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। भोपाल रायसेन सहित अन्य जिलों में भी आयोजित लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के सरचार्ज में 100% तक की छूट का लाभ दिया गया। प्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयासों को गति मिली है। इसी क्रम में मणिया ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड के 131 ग्राम, जैसी नगर के 145 ग्राम, सागर ब्लॉक के 26 ग्राम तथा रायसेन जिले के बेगमगंज विकासखंड की 15 ग्रामों सहित कुल 317 ग्रामों को शुद्ध पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भोपाल में आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी भोपाल के कुल 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये सीरीज 15 मई से 20 मई तक खेली जाएगी, जिसमें देश और विदेश के युवा खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंरचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने लोगों को तेज गर्मी व लू से बचाव हेतु सावधानी बरतने की सलाह दी है।
4: बढ़ती गर्मी के कारण लू एवं

0: शरीर में पानी की मात्रा कम होना जैसे मरीज जिले के स्वास्थ्य संस्था में बढ़ रहे हैं। यदि आपको बुखार, उल्टी, दस्त, सरदर्द या पेशाब में जलन जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो ये लू अर्थात हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को जिनको लू से खतरा अधिक है वो दोपहर में धूप में ना निकले, अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी, छाछ, नींबू पानी जैसे पदार्थों का सेवन करें।
1: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती, इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबेगो की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबेगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। हुर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। खंडवा में जल संरक्षण और नदी संवर्धन को जन आंदोलन, कल आबना नदी तट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया गया है। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांचें भी निःशुल्क की गईं। आगर मालवा में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है खेती गृहस्थी पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुन बारे सभी भैया पंचों और बिन्ना पंचों को सतीश साहू
1: और सुनील राय दो जनों की दो ही हाथ जोड़े की
2: राम राम, राम।
1: और बड़े आप के लाने भी हमारी राम राम पहुंच जाए।
0: बिल्कुल सुनील भैया स्वीकार कर ली है और आपको हमारी राम राम पहुंच जाए।
1: राम राम बड़े।
0: और झट देनी अपन बता दें कि आज के कार्यक्रम में अपन किसानों को काका लेके हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बच जा रहे इंतजार ये करते रहे थे और मौसम बहुत ऊंच नीच वार हो रहा है तो ये बातें बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया तो आज की जो चर्चा को अपनो मुख्य क्रम रहे थे भैया वो मैं वर्तमान समय के खेत की तैयारी से संबंधित कौन कौन से काम है या तो हो गई अपनी कृषि चर्चा।
1: बिल्कुल।
0: और सुनील भैया अपन जानते ही होकर रोज दिन दिवस जो विशेष रहे थे उपे अपन चर्चा कर रहे थे तो उपे भी आज चर्चा हुई है। संगे संगे भैया मनोरंजन को अपन को लोकगीत ले आते हैं तो लोकगीत भी लेके आए हैं और ओके अलावा हमारे जो रोज के क्रम रहते हैं चाहे नाज के भाव कह लो चाहे मौसम की जानकारी कह लो तो ये बिल्कुल चूक नहीं सकत अपन लेके आए हैं। और भैया सबसे पहले अपन का सुनवा रहे हैं किसान भैया
1: आज आज को खास कार्यक्रम रहते आकाशवाणी गांव में।
0: बिल्कुल भैया
1: आप भूल गए
0: चूक हो गई भैया हमसे आकाशवाणी गांव में के तहत भैया हरो हम बताएं देत के आज ग्राम बरोदिया बल्लभ विकास खंड राहतगढ़ के किसान खुमान कुर्मी और राहुल अहिरवार से सुनील भैया आपने जो चर्चा करी है भावी अपन सुनवा है। तो सबसे पहले भैया अपन शुरू करत हैं दिन और दिवस से जैसी कि अक्सर अपन शुरुआत करत हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बर्थडे तो, देखियो आज का ही महाराणा प्रताप की जयंती।
0: बिल्कुल
1: मालखरों भारत के इतिहास में मुगलों की अधीनता के विरुद्ध संघर्ष करवे के लाने महाराणा प्रताप को नाम जग में जाहिर कहा न बड्डे।
0: बिल्कुल
1: वे 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में अपनी वीरता के लाने प्रसिद्ध हैं। मेवाड़ के राजा महान शासक महाराणा प्रताप को जन्म 9 मई 1540 को भवत हो। कछु लोग इनके जन्म की दूसरी तिथियां सोई बताते हैं। उनने अपने पूरे जीवन में मेवाड़ की स्वतंत्रता के संघर्ष में समर्पित कर दो। हल्दी घाटी के युद्ध में

0: सीमित संसाधनों के बाद, मतलब ज्यादा संसाधन नहीं हते, उनने अपने दुश्मनों को कड़ो मुकाबला करो और मेवाड़ की स्वतंत्रता स्वाभिमान को अनूठो उदाहरण पेश करो। आज हम उनकी जयंती पे उनको बड़े सत सत नमन करत हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, इन्होंने जो सुरक्षा करी, जो अपने देश की रक्षा करी, जो इत्यो को स्वाभिमान बनाए रखो, वो निश्चित रूप से भैया नमन करवे लाखई है। और एक बाद स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी की भी आज अपन जयंती मनाते हैं सुनील भैया। तो देश के महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी को जन्म आज ही के दिना 9 मई को 1866 में महाराष्ट्र में भाव। तो वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख उदारवादी माने नरम पंथी नेता हते भैया, समाज सुधारक हते और शिक्षाविद भी हते। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध गोखले जी ने सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी और संवैधानिक तरीकों से स्वतंत्रता और समाज की मजबूती के लाने जीवन भर जो है सुनील भैया संघर्ष करो। तो आज अपन ऐसे महान नेता को उनकी जयंती पे भी बारंबार प्रणाम कराते हैं।
0: बिल्कुल, बड़े जो न गांधी जी के गुरु रहे और शांतिपूर्वक समस्याओं को कैसे हल करो जाते, जा बहुत बड़ी बात कहानी बड़े।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया। और सुनील भैया,
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ा के कछु संदेश सुन ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
3: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
2: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
3: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: तो सुनील भैया,
3: हाँ,
2: जैसी कि हमने बताई थी कि आज की जो मुख्य चर्चा होते है अपनी किसान वाणी की, किसानी की, तो इमें खेत की तैयारी से संबंधित। अच्छा, उनसे तो जो समय चल रहा है भैया, बहुत से खेती बाड़ी के काम हो।
3: बिल्कुल बिल्कुल बड्डे, सबसे पहले तो जो कहानो के जो नाज निकरो है,
2: हाँ,
3: बेचने का हो,
2: हाँ,
3: और उखू बेच भी के लाने पे सोसाइटी के लाने तनक मशक्कत करने पर रही है, फिर
2: बिल्कुल,
3: मंडी
2: बिल्कुल।
3: में भी भीड़ लगी है, तो सबसे पहले तो वो काम लगे ही है, बिना अर्थ के तो कछु
2: कछु
3: करता ही नहीं है।
2: बिल्कुल भैया सही बात है, अर्थ ही से अर्थ है, तो बाकी सब अनर्थ है।
3: हाँ, बाकी है। बिल्कुल सही बात है, तो, करी बड़े है। जा तो बाकी सब अनर्थ है।
2: तो जो हम काम की बात कर रहे थे भैया, ओके, संगे भी जो बहुत से काम अपन को करत रहो चाहिए, जैसे गहरी जुताई को।
3: हाँ, जो बहुत
2: खेत की तैयारी
3: बड्डे,
2: तो रवि फसलों की कटाई के बाद अगर हमें गहरी जुताई कराए अपन, 3 साल अगर हो गए तो अपने खेत की गहरी जुताई कराओ चाहिए। गर्मी की गहरी जुताई से हानिकारक कीट नष्ट होबे के संगे ही माटी पलटबे को काम भी होत है, जो जमीन की उर्वरता को बढ़ात है, ऊपर तर पे लेते आत है, और खरीफ फसलों में जो है फायदेमंद होत है। सुनील भैया
3: बिल्कुल बड़े बढ़िया बात करी, और आज जो हमने विरोधी या वल्लभ के किसान भैया से चर्चा करी है, तो उनने गहरी जुताई के और भी विकल्प बताए हैं।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो मतलब जो उनमे 3 साल हो गए हैं या अपन प्लाउ नहीं करवा पा रहे हैं,
2: हाँ।
3: तो बा उनमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर हमारे किसान भैया सुन हैं,
2: हाँ।
3: तो उनको लाभ जरूर मिले,
2: लाभ जरूर मिले। और सुनील भैया जा भी बता दें कि एक कार्यक्रम को जो उद्देश्य रहते है आकाशवाणी गाँव में को बिल्कुल जो ही आ रहे, कि अगर एक किसान कछु अच्छो काम कर रहा है तो दूसरों तक वो पहुंचो चाहिए।
3: बिल्कुल सही बात है, करी बड्डे आपने।
2: अब भैया खेत की जो तैयारी की अपन माटी की बर कर रहे हो, की अगली बात
3: जैसे अब बात जा कहा है कि खेतों को समतलीकरण। अक्सर अपन देखा थे कि बस्कारे में मौसम में हमारे खेतों में पानी भराव की समस्या होते, और जो अपनी भरेल जगह कहते हैं अपन, तो अब एक समझो खेत में समतल बनावे के लाने भी बहुत उचित मानो जाते हैं। कहा जो समय ऐसो कहा, सभी किसान भैया जानत है कि उनके कौन से खेत में कहाँ जल भरात है, खेत को समतलीकरण की जोन मशीने आते हैं, लेवलर आते हैं, उनसे अपन खेत को पाटा लगा के या

0: या अपने पास गुंजाइश तो अपन अपने पंजा में पाटा लगा के बखन्नी करके माटी को खींच के खेत को समतलीकरण कर सकते हैं, जितनों कर सकते हैं उतनों कर सकते हैं जी। मैं अपन को सिंचाई में समस्या नहीं जावे। और बड्डी एक बात और कहते हैं कि अगर मेण बधान की बात करें तो मेण बधान अगर ढंग से हो जाए तो बहुत बढ़िया काम।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, हरो सुनील भैया ने सही कही। अपने कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि खाली खेतों के समय पर हमें अपने खेतों की मेणों की देखरेख भी करो चाहिए। अगर मेड़े टूट फूट गई हैं तो उनको 100 बांधवे को काम करने हैं। संगे ही अगर मेड़े बहुत चौड़ी हो गई हैं तो उनको सकरो करने हैं। चौड़ी मेड़े भैया हमारे खेत को रकबा या फसल क्षेत्र कम कर देते हैं।
0: सही है
1: ना? खेत नहीं है कि बेगवाई खेत खाद लगे तो फिर भैया का हुई है। तो मेड़े सकरी रखो चाहिए। सकरी मेड़ों में कीट रोग व्याधियों से निपटने में भी सरलता होती
0: है। बिल्कुल ठीक है कह रहे बड्डे। और हम जाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं, अपन संदेश सुने लेते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
1: कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो सुनील भैया, कार्यक्रम के ए भाग में एक बार फिर अपन सभी सुनवे वाले किसान भैया बिन्ना हरों को स्वागत कर रहे हैं।
7: स्वागत की बेला में जा कहाई के बहुत मतलब दिमाग को भी हल्को करवाए दी, मनोरंजन करवाए दी,
6: ऐसी ऐसी
7: बहुत उमदा सो लोग गीत गाड़ी लेके आए हैं, वहां को समय चल रहा है, एकों गा रही माल तीव्रमा अपन झट्टे सुने लेते बढ़
6: हाँ।

वाह। तो सुनील भैया देखो कितो तो उम्दा ब्यावगी तपन ने सुनवाओ अपने सुनने वाले किसान भैया बिन नहारों को। और अब जो आप शुरू में चर्चा कर रहे थे कि साप्ताहिक क्रम आकाशवाणी गांव में कि आज बेरा होत है, तो वह बेरा आ चुकी है भैया। और ग्राम बरोदिया वल्लभ राहतगढ़ के किसान खुमान कुर्मी और राहुल अहिरवार से सुनील भैया आपने जो बातचीत करी है वह अपन सुनवाते हैं।

0: आकाशवाणी गांव में एक कार्यक्रम के तहत भैया आज आए हैं अपन ग्राम बरोदिया वल्लभ जो कि खुरई रोड पर है और सागर से 40 किलोमीटर पड़त है। इतने कछु किसान भैया अपने संगे अपन उन्हीं से कर ली थे चर्चा। एक जागरूक किसान अपने संगे कहा है अपन इन्हीं से जान लिए थे इनको परिचय। जयराम जी दाऊ।
1: जयराम जी सर। जयराम जी
0: अपना शुभ नाम?
1: खुमान सिंह कुर्मी।
0: तो खुमान भैया जो खुरई रोड पे कहाँ से अपन को कटने पड़ा था कि अपन बरोदिया वल्लभ आ जाते?
1: जो अपनो सागर खुरई मार्ग जो है ऐसे अपन सेमरा फाटक बजे थे वो ऐसे है 5 किलोमीटर दक्षिण में बरोदिया वल्लभ।
0: बिल्कुल ठीक। खुमान भैया जा बताओ कि किसानी में अपन कब से लगे हैं?
1: अपन को लगभग 20 वर्ष हो गए किसानी करते।
0: पहले की किसानी कैसे होती और अबे की किसानी में क्या फर्क समझ में आता है आपको?
1: अब सर पहले होती थी जो बैल बखर चलते थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी और हाथ से करते थे। अब जो विज्ञान के थ्रू हो रही है तो इसमें किसानों को लाभ मिल रहा है और जो सुझाव देते हैं आकाशवाणी के माध्यम से सुनता हूँ मैं, मिलते हैं उससे अपन करते हैं किसानी तो उससे फ़ायदा होता है।
0: मैं बहुत बढ़िया बात करी कि आप किसानवाणी सुनत हो और किसानवाणी के सुनवे से जो आपको फ़ायदा समझ में आते वे आप इतने लागू करत हो और उनसे लाभ भी लेते हो। आप जा बताओ कि आपने अपने जड़ कार्य की सीजन में
1: जी
0: काय काय की बोनी करी थी और कैसी का फसलें रही?
1: अपन ने सर गेहूँ, मसूर, चना और एक आस और अपन ने इस साल मक्का भी बोई थी। उत्पादन अच्छा हुआ लेकिन उसका भाव नहीं मिला तो उससे किसान

0: को मतलब उतना लाभ नहीं हुआ, और अपन ने कलौंजी भी बही थी।
1: अच्छा, कलौंजी तो जा एक प्रकार से औषधीय फसल कहानी, तो कलौंजी कितने जगह में लगाए थे अपन?
0: वो अपन सर एक एकड़ में लगाए थे।
1: कैसो कह रहा होगा
0: उसका? पहली बार लगाया तो उतना अनुभव नहीं था अपन को, फिर भी वो लगभग 2.5 क्विंटल हो गई अपनी।
1: तो वो बेचवे कहाँ ले गए?
0: अबे तो रखी है, मैंने सोच रहा है कि नीमच में बिका थे उतना ही ले जाए।
1: अच्छा, अबे कछु रेट की जानकारी ली, क्या रेट चल रहा है, कैसो का है वो?
0: अबे लगभग 17-18 हज़ार रुपया क्विंटल को अपने मालूम लग रहा है।
1: अच्छा, तो अपनी लागत कितनी लग गई थी भैया इसमें?
0: वो मैं अपन ने 3,000 को बीजा खरीदो और बस खाद पानी, विशेष लागत नहीं लगी अपनी।
1: देख रेख अपन ने पूरी पूरी करी कहानी, अब अपने पास माल धरो कहानो, और अपन विचार में है कि अपन एक नीमच में बेच
0: भी जाए। और भी किसान लगाए थे तो ऐसे सब मिला के सब ले जाए वाहन करके, अब फिर जो भाव बिके महीना के बाद।
1: ठीक है, तो मसूर कैसी कपा जी अपनी, एक एकड़ में कैसो का एवरेज बनो?
0: अपनी सर 6 और 7 के बीच में रही सभी किसानों की।
1: अच्छा जी, तो चाइना मसूर बहते के या मंजली वारी?
0: मंजली वारी भूरी बहते।
1: अच्छा अच्छा, तो मंडी में बेच दई हो?
0: कछु भी दही कछु रखी है।
1: तो मंडी में दही का रेट मिले कहा है अपन?
0: अपन ने एक ट्राली में चीते तो बा गई थी 6200, और फिर दूसरी ले गए थी बा गई थी 7000।
1: तो उमें का बारीक बारी मसूर हती का ज्यादा
0: बीजा बोई है तो, लेकिन मार्केट जावे ना है तो क्वालिटी बढ़िया थी वही बीजा है तो।
1: अच्छा, 6200 के बाद सीधी 7000 मिल गई
0: 4 दिन बाद।
1: तो मतलब मुझको फर्क मिल गया कहा ना, अपन को जो सोसाइटी में रेट चल रहा वही रेट अपन को मिल गया नगद में।
0: जी,
1: बहुत बढ़िया बात कहानी। और चना की बात करें तो चना
0: अब रखो है, बेचो नहीं है।
1: अच्छा, तो कैसो का एवरेज बनो एक
0: को? लगभग ऐसे ही 8-9 को ऐसे ही आओ।
1: और पिसिया
0: को आओ है 14 से 16 तक।
1: अच्छा, कौन कौन सी किस्म बाई थी है जानकारी?
0: जी, करोड़ वंदना बाई थी, 0513 बाई थी, और एक प्रभु करके हैं वो बाई थी।
1: तो करण वंदना तो पुरानी किस्म कहानी बात, तो मिल्क क्वालिटी का ही। और 513 की आप बात कर रहे हो, तो 513 तो 1544 से अच्छी वैरायटी का है।
0: तो
1: एक एक का रेट का है बेची का मंडी में?
0: अबे नहीं बेची,
1: फिर भी दाम तो अच्छे चल रहे का है।
0: जी, ओके चल रहा है, लगभग सुन रहे अपन के 2700 की समथिंग चल रही है।
1: चलो, तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब जा वाली भी 513 जो आप बए हों तो जा भी आपको जो है सोसाइटी से ज़्यादा ही रेट देखेंगे।
0: जी,
1: जा और जान वो चाह रहा है कि खेती की बारीकी से देखभाल करवे के लाने सीजन मिला थे अपन खो जोई।
0: जी,
1: मैंने कड़ाके की गर्मी में खेत को सुधार भी को, तो अबे अपन खेती में का सुधार में लगे?
0: अबे सर एक तोता पिलाऊ करके आते है अपन ने, वो चलाओ है जो खेती को लेयर तोड़ा थे।
1: अच्छा अच्छा,
0: वो चलाओ है अपन ने, और उसके बाद में पिलाऊ चल रहा है।
1: तो तोता पिलाऊ अलग से रहते का?
0: जी, अलग से रहते।
1: एक घंटा में कितना काम कर देते?
0: जो 3 एकड़ निकाल देते,
1: एक घंटा में 3 एकड़ निकाल देते। तो आपने कहा कि तोता पिलाऊ जमीन की लेयर को मैंने पट जो बन जाते बाफर तोड़ देते, अपने पुराने पल्टी पिलाऊ का बे नहीं तोड़ पाते का?
0: पल्टी पिलाऊ तो तोड़ देते सर, लेकिन हर साल पल्टी पिलाऊ नहीं कर सका था अपन।
1: अच्छा, उसमें टाइम ज्यादा लगा थे, पैसा भी ज्यादा लगा थे। तो जो कितने गहराई से पड़ तोड़ देते, जैसे वो अपन कहते ना कि वो एक और रात है पिलाऊ पंजी, सुबह पिलाऊ पंजी से ज्यादा अच्छो कहाना,
0: उससे ज्यादा अच्छो से मान पंजी से ज्यादा गहराई ले ली और सीधी बात गहराई ले ली।
1: अच्छा, कितने में तोता पिलाऊ लगे रहे थे?
0: वे 9 रेत है।
1: 9 रेत है, बहुत बढ़िया बात करी है आपने खानदाव। अब बात आगे कि आपने जावी तैयारी कर डाली और अपने लाने बरसात की तैयारी भी करने का है, तो बरसात में काय की बोनी को मन बनाए हो?
0: इस साल बरसात में अपन उड़दा भी हैं थोड़े, अभी तो बंद कर देते 2-3 साल से, लेकिन इस साल सोच रहा है कि उड़दा में हैं और सोयाबीन सुबह हूँ और मक्का भी थोड़ी बहुत बे।
1: माने मिश्रित खेती करो, कोई में लाभ तो कोई में कम लाभ, मानो अपनो मीजान बन जाए कि अपन घाटे में न रहे।
0: जी जी,
1: बहुत बढ़िया काम कर रहा है आप। अच्छा, अबे आपने पिसी जो ना अपन बाएं दे, तो पिसिया में अपन ने कटर से पिसिया कटवाई के हार्वेस्टर चलवाओ?
0: कटर से कटवाई सब।
1: तो फिर अपन को नरवाई जलावे को काम ही नहीं रखो?
0: जी नहीं नहीं।
1: अच्छा, अपने बरौदिया वल्लभ में ऐसे कितने लोग हैं जो ने हार्वेस्टर चलवाओ?
0: हार्वेस्टर क्या है, हम लोग जानवर रखे हैं, मवेशी भैंस गाय हैं, तो हमारे गांव में लगभग सभी जाके हैं, लगभग 20% या 5-10% हार्वेस्टर बाकी सब कटर से काटे।
1: अच्छा, तो कुंडर भाई जलाई का कौन ने?
0: शायद किसी ने नहीं जलाई।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके तो 80% आदमियों ने कटर से पिसिया कटवाई कहा और अच्छो बारीक भूसा बनवा लो थ्रेसर से और भूसा अपन घर में रख लो।
0: घर में रख लो, घर यूज करा थे।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया बात। एक मतलब कहो कि जानवर अपने पास भरपूर।

0: हमारे को जी।
1: तो दूध घर ही हो रहा
0: जी।
1: अच्छा, तो कछु बेचत भी हुई दूध
0: जी? डेली है जी, सरकार की तरफ से उन डेलियों पे जाता है और कुछ मठा वगैरह घर के उपयोग के लिए।
1: दूध भी बेच रहे हैं और अपने घर के बाल बच्चे भी स्वस्थ और मजबूत हो रहे हैं, तो खेती में आगे भी काम करते हैं। और अच्छा बात, अब जा आजाद के अपन ने पशुओं से तो काम ले लो, अब जो गोबर बच रहा वो को क्या करत अपन?
0: वो को सर अपन जो करत है कि एक साल तो अपन एक खदान ले तो उसमें रख दे, दूसरी उसको फिर उठा के अपन नाडब बने हैं उनमें रख दे।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो मात्र 4 महीना और बोनी के पहले ठंडों में अपन उसको खेत में फेंक दे।
1: पचो पचाओ खाद जड़कारे में फेंक रहे हैं तो वो खाद सूखने नहीं है, वो खाद असली खाद के रूप में काम करत कहा, बड़ी बारीकी से काम कर रहे हो। अब अपन हमने आपको देखो बगीचा भी लगो है, तो बगीचा में बहुत निबुआ लगो, कितनों निबुआ लगो है और आंवले भी लगे हैं, कितने जगह में लगी जी सब बगीचा में?
0: वे सब 9 एकड़ में लगे
1: हैं। तो मुतकी आंवले लगे हैं
0: जी,
1: निबुआ लगो है
0: जी,
1: और बहुत बढ़िया तरीके से अभी हरे आ रहे हैं
0: जी।
1: इनकी देख रेख के लाने आगे को और का प्रयास है आपको?
0: अब आगे को जो ये कि अपन ने बुलवाई थी आए थे तो उन्होंने जो बताया है उसकी विधि दवाई वगैरह जी कछु है वो अपन उस हिसाब से करेंगे।
1: मैंने जाओ कहा कि अबे आपको कम लाभ मिल रहा हुई है
0: जी,
1: आप आवे वाले समय में उनसे और भरपूर लाभ लेवे को भी प्रयास करो
0: जी। जी
1: बहुत बढ़िया है, आपकी योजनाएं बहुत बढ़िया कहें। और अबे आप चर्चा भी कर रहे थे कि मुनगा भी लगाने हैं, तो मुनगा की सोच भी आपकी बहुत बढ़िया कहानी, तो मुनगा भी लगे हो आप
0: जी?
1: तो जहां जगह खाली लगे उतने लगे हो
0: जी? उतने वहीं पे लगा देंगे अपन, जो बताया है उन्होंने उसी विधि से लगाएंगे, जो बताएंगे फिर उसका लाभ और अलग से मिलेगा।
1: कछुआरे के बजाय अपन फलोदान पे लगे हैं
0: जी।
1: अच्छा कछु कछुआरे को विचार कबो नहीं आओ?
0: नहीं पहले कराते, अब क्या है कि पानी की कमी आ गई सो नहीं करा, नहीं पहले प्याज भी 2-10 एकड़ में लगाते और हरी सब्जी भी 4-6 एकड़ में लगी रही।
1: तो अब धीरे धीरे करके अपन ने जो कम कर दिया है फलोदान पे रहेगा पानी की कमी की वजह से। देख रेख की बात आते है तो इतने भी जो है पशु तो सब आवारा ही कहा है, तो उनकी देख रेख कैसे कहा करे अपन?
0: अब उनकी यह सोकरा था कभी झटका मशीनें चल गई भी लगा दी, और कछु फेंसिंग है ऐसी कर तो कछु आदमी भी अठा दी जहाँ नहीं है फेंसिंग या कछु व्यवस्था।
1: और खुमानदा चलत चलत हम आखिर में एक प्रश्न और पूछो चाहते हैं आपसे कि आजकल के जो नए युवा हैं
0: जी,
1: जो मोड़ी मोड़ा बढ़ रहे हैं वे मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते
0: जी,
1: हैं
0: जी,
1: और मेहनत के काम उतने कम कर रहे हैं, उनसे कछु कह चाहत हो का कि वे अपने जीवन को कैसे संवारें और मेहनत करके भी और खुद की खेती से कैसे अपन मन में संतोष रख के आगे बढ़े, कछु कह चाहत हो उन्हों से?
0: पहले नंबर तो उनसे यही क्या वो है कि पढ़ाई करें अच्छी, और उसके बाद क्या है शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। मैंने सुना है किसी के कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
1: बहुत बढ़िया बात।
0: इसके बाद में मेहनत तो करने ही करने हैं
1: जी। बहुत बढ़िया बात रखी आपने, और आपसे बातचीत करके बहुत ही उम्दा लगो। जयराम जी भैया।
0: जयराम जी।
1: एक और युवा किसान भैया अपने संग विराज हैं, अपन इनसे सोई बातचीत करें लेते हैं। जयराम जी भैया।
2: जयराम जी।
1: अपना शुभ नाम बताते पहला।
2: राहुल अहिरवार।
1: राहुल भैया कौन गांव से कहा है?
2: बरोदिया वल्लभ।
1: अच्छा, तो राहुल भैया आप भी किसानी करत कहाँ ने?
2: जी
1: किसानी में बहुत मेहनत लगत है।
2: हाँ,
1: और आप युवा कहा है तो आपको मन कैसे लग रहे थे किसानी भी अपन कर रहे हैं और मन में संतोषी भी रहते हैं? आजकल के युवा देख रहे हैं अपन के किसानी उतने मन से नहीं कर रहे,
2: वो तो मेहनत भी करना ही पड़ा थे, सब किलाने आगे भी देखने पड़ा थे, मजदूर हैं किसान हैं सब किलाने करने पड़ा थे।
1: राहुल भैया जा बताओ कि किसानी में पहले बैलों से खेती होती तो शुद्ध अनाज मिलत तो शुद्ध सब्जी मिलती, अब ऐसो का होगा कि अब अपन को शुद्ध अनाज नहीं मिल पा रहा, शुद्ध सब्जी नहीं मिल पा रही?
2: दवाइयों के कारण, पहले देसी खाद था अब दवाई चल गई उसके कारण बहुत वो हो गया है।
1: कछु आपने ये बात विचार करो कि घरे खावे अलग से आधा एकड़ में नाज लगा लेवे और घर के पीछे

0: वो ही जमीन की वो तोड़ता है,
1: पड़ तोड़ देते हैं,
0: पड़ तोड़ देते।
1: आपसे बात करी और खुमान भैया से बात करी तो मैं जो फर्क समझ में आया उसमें टाइम ज्यादा लगा था, मैं टाइम कम लगा था। खेती करने तो पहलो कदम कहानो कि जमीन को सुधार वो। अच्छा, जहाँ तक खाद की बात करें तो खाद को कैसो का उपयोग करत हो?
0: खाद को देसी डालत है,
1: पहले देसी डाल, फिर बाद में बोनी के टाइम पे,
0: बोनी के टाइम पे जो ही अपने पोटास ये चीज डाल दें, डीएपी ये चीज डाल देते,
1: पचो भाव गोबर को खाद धरे कहा है अपन।
0: हाँ।
1: जितनी जगह में हो जाए तो उतनी जगह में वो डाल दो। अपने घर कितने गाय भैंस रखे हैं?
0: घर पे चार हैं।
1: तो दूध भी हो रहा हो?
0: हाँ।
1: और गोबर अपन खाद के लाने,
0: खाद के लाने
1: तैयार करके रखा। हाँ। किसानी के ऊपर एक और महत्वपूर्ण बात आते है राहुल भैया कि अगर किसानी करने है तो मैं खाद कितनों लगने हैं, कौन सो खाद लगने हैं, तो मच्छेंद्री माता को स्वास्थ्य कैसो का है एक लाने एक बात आते है मिट्टी परीक्षण की, तो मिट्टी परीक्षण पे कितना ध्यान दवा
0: करवाते हैं?
1: चलो तो फिर बहुत बढ़िया बात है कि मिट्टी परीक्षण आप करवाते हो तो उसे जो अपन को अंदाज बैठ जाते हैं कि अपन मिट्टी को स्वास्थ्य कैसो है, कितनों में पोटास डालने, कितनी नाइट्रोजन डल है, कितनों सल्फर डल है। युवा का है और समझदारी से किसानी कर रहे हैं तो निश्चित है कि अपने लाने कछु पड़ता तो लगे। अच्छा, एक बात और आते है कि जब बोनी करवे को टाइम आते जब किसान फड़फड़ाने लगा थे काय के लाने,
0: बोनी
1: के लाने और बीज के लाने, जैसे बसकारे की बोनी करे अपन बात तो सोयाबीन बेवे चाहे मक्का बेवे चाहे उड़दा बेवे चाहे मूंग बेवे, तो अपने पास बीज की कैसी का तैयारी है?
0: अपने लाने तो है तैयारी है,
1: घरे रखे हो?
0: हाँ, सुखा के रख दो, कंप्लीट ग्रेडर करके।
1: अच्छा, ग्रेडर भी कर दो? हाँ। ग्रेडर वो दिखा रहा है। हाँ। ट्रैक्टर पे लदो ही है।
0: हाँ।
1: तो माने ग्रेडर करके आपने बिल्कुल सुखा के और तैयार कहानो माल। हाँ, मौका मिले
0: बोनी कर
1: दे, मतलब जा बात कहा कि डार को चूको बंदरा और असाड़ को चूको किसान, तो अपन चूकवे को काम इन्हें रखे। ट्रैक्टर भी तैयार कहा है, ऊपर वारो मौका दे है तो डार से बंदरा ने चूक पे है, बोनी करके ही मान है राहुल भज्जा। राहुल भज्जा, आपसे बातचीत करके बहुत ही बढ़िया लगो, धन्यवाद आपके लाने। जयराम जी भज्जा।
0: जयराम जी।
2: तो देखो सुनील भैया, आपने कितने विस्तार से इन दो ही किसानों से बातचीत करी जो बरोदिया बल्लक गांव के हते, विकास खंड राहतगढ़ हतो, तो बहुत बढ़िया इसे दूसरे किसानों को भी निश्चित रूप से जानकारी मिली हुई है। और आज की सुनील भैया जो अपन खास चर्चा कर रहे थे खेती की तैयारी के संबंध में, तो माटी की जाँच को भी एक प्रश्न उठा था।
1: बिल्कुल सही कह रहे बड्डे आप, कहा से कि जैसे अपन को अगली फसल लेने हैं और अपनी माटी धीरे धीरे करके, वैसे पहला कम एचपी के ट्रैक्टर काम करते, अब बहुत ज़्यादा एचपी के ट्रैक्टर काम करने लगे हैं, माने जा बात कहा है कि अपनी खेती में पोषक तत्व तो कौन कौन से डालने हैं।
2: हाँ।
1: माने मिट्टी परीक्षण जरूर करवाने कहा, वो बड्डे आजकल कहा है कि मिट्टी परीक्षण आसान हो गया है, कृषि विज्ञान केंद्र से करवा सकते हैं अपन,
2: बिल्कुल,
1: और भी चलित प्रयोगशाला हैं उतें करवा सकत हैं अपन आराम से, और अब आपको जा मालूम पड़ जाए कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कितने हैं, वो हिसाब से अपन को सोयाबीन बोने, राहर बोने, उड़दा मूंग मक्का का बोने, वो हिसाब से अपन काम कर सकते हैं।
2: अच्छा, और माटी की जांच को मतलब किसान भैया जहाँ जो समझते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व कम है, अच्छा कम ही नहीं भैया ज्यादा कौन से हैं वो भी पता पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही,
2: सब हिसाबों से पोषक तत्व फिर अपन की आपूर्ति करते हैं। एक बात भैया, आपने खेतों से जो नरवा नारे निकले हैं उनको पानी हमें बाद में बहुत काम में आउ थे सुनील भैया,
1: जा बड़ी बात है,
2: तो अबे अपन जे नरवा नारे जब खाली खेत अपने डरे हैं तो इनकी साफ सफाई को भी काम कर सकते हैं, इनकी गहराई बढ़ावे को काम कर सकते हैं, संगे इनमें अलग अलग जोन स्थानों पे गहराई हो उते अपन छोटे छोटे बोरी बांधान बंधा के भी अपनो जल भंडारण बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल बड्डे, बहुत महत्वपूर्ण बात जा भी कहा है कि जिनके कुआ है तो कुआ में भी माटी भर जाते हैं बसकारे में,
2: हाँ,
1: कैसी तो कुआ की साफ सफाई किसान भैया रे कर ही रहे, अपन तो जताया रहे।
2: हाँ।
1: से के मनो साफ सफाई को अबे मौका कहा नो बड़ी,
2: बिल्कुल जितनी भी जल संरचना है सबकी
1: बहुत बड़ा काम कहा, और उर्वरता बढ़ावे के लाने मतलब मिट्टी की जीवाश्म अगर अपन बढ़ा लेवे,
2: बिल्कुल
1: बहुत बढ़िया काम है। जो काम कहा से होते
2: जो जैविक खाद,
1: जैविक खाद मतलब गोबर की खाद अबे डाल देने कहा है,
2: और अब नहीं भी डाल रहे घाम के ऐसे तो जुगाड़ करके भैया व्यवस्था करके रख लो खो सुरक्षित छायरे में, नमी दे जाओ खो, और जब बोनी को समय आए उसके पहले अपन को डाल दे।
1: बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अगर कोनो भी खेत के पेड़ के नीचे अपनो खाद धर दे, पूरे बस्कारे में खाद पानी लेते रहे, वो के बाद में अपन
3: जड़कारे में बोनी के पहले छिटकवा दो।
2: बिल्कुल।

0: और सुनील भैया आप फिर टोकत हैं कैसे कार्यक्रम में समय हो गया है एक बार फिर से मनोरंजन को और एक बड़ो सुरीलो सो लोकगीत लेके आए हैं। उर्मिला पांडे जी कह रही हैं कि बन आए वेद बिहारी जू।
1: बिल्कुल सुनील बड्डे

0: तो सुनील भैया
1: देखो
0: कितो अच्छो जो अपन ने लोक शैलीबद्ध गीत अपने सुनवे बारे किसान भैया बिन नहारो को सुनवाओ। मनो अब घड़ी कह रही है कि जल्दी से अनाज के भाव और मौसम की जानकारी दे दी जाए।
1: बिल्कुल बड्डी।
0: तो भैया आज के अनाज भाव की हम जानकारी देते हैं। गेहूं रो न्यूनतम 2235 अधिकतम 3800 रुपये प्रति क्विंटल, चना 4200 से 5535, सोयाबीन 5405 से 6765, मसूरी 5905 से 9460, मक्का 1600 से 1615, सरसों 4700 से 7275 और बटरी 3105 से 4100 रुपये प्रति क्विंटल।
1: बिल्कुल बड्डे आपने जी झट्टे ही बता दिया। अब हम और बता देते हैं कि आज मौसम के का हाल रहा है। दिन को अधिकतम तापमान रहा 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहो 23 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्द्रता भुंसरा की रही है 70% तो संजा बिरिया की रही है 45%।
0: अच्छा,
1: इन्हीं सब बातों के संग में बड्डे का है मौसम हो रहे हो ऊंच नीच ब्याह सारंग को चल रहा हो समय।
0: बिल्कुल।
1: तो अपनों ख्याल

0: रखने, अपने बाल बच्चों को भी ख्याल रखने और खान पान में विशेष सावधानी रखने का हो कि भई अपन को मतलब जहाँ तक बन सके सो अपन ताजो भोजन करते रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, और संगे अपने स्वास्थ्य के संगे अपने जो बेजुबान पशुधन है अपनो उनके भी स्वास्थ्य को ध्यान रखने। और सुनील भैया, आप घड़ी कह रही है कि उठ जाओ, अगलो कार्यक्रम होने हैं, तो अपन सभी जनों से अनुमति लेते हैं। सभी जनों को सतीश साहू
0: और सुनील राय, दो जनों की दो हाथ जोड़े की राम राम।
2: अब तो ज्यादा लाइनें और खास तक।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: अरे सुन तो।
5: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
4: किसको?
5: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। हुँ?
4: अच्छा ये बात है।
5: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
4: अब तो झट से बात हो जाती है।
5: ऐसा क्या?
2: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
5: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
4: हाँ।
5: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
6: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं गैंगस्टर फिल्म से सईद कादरी के बोल, संगीत दिया है प्रीतम ने, आवाज़ के की।

अभी आप सुन रहे थे गैंगस्टर फिल्म से केके की आवाज़। अब आपको सुनवा रहे हैं आई लव न्यू ईयर फिल्म से तोशी रैना की आवाज़, गीतकार मयूरपुरी, संगीतकार अनुपम।

अभी आप सुन रहे थे इंसान फिल्म का गीत बोल थे समीर के, संगीत था हिमेश रेशमिया का, गायक कलाकार थे उदित नारायण और अलका याग्निक। अब आपको सुनवा रहे हैं जन्नत फिल्म से केके की आवाज़, सईद कादरी के बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

के गाए इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। अब आपको सुनवा रहे हैं जफर गोरखपुरी का कलाम, आवाज पंकज उदास की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जफर गोरखपुरी का कलाम, आवाज थी पंकज उदास की। और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से। और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का, तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
3: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आकाशवाणी सागर से। इस वक्त आप सुन रहे हैं संगीत सरिता। अब आपको सुनवा रहे हैं कैफ इरफानी की शब्द रचना, आवाज मुकेश की।

0: इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही संगीत सरिता का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में समाचार संध्या का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी।

0: ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर

0: तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वामदलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। रात्रि

के 9 बजे हैं और वक्त है श्रोताओं के फरमाइशी नगमों के कार्यक्रम मन चाहे गीत का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद के तराने। कहते हैं कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी बेचैनी किसी शोर में नहीं बल्कि किसी अपने की खामोशी में छिपी होती है। भीड़ से भरे बाजार, जगमगाती दुकानें, लोगों की चहल पहल, सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन अगर वो एक चेहरा नज़र ना आए तो दिल को हर रंग फीका लगने लगता है। ऐसे ही जज्बातों के साथ आपकी पसंद पर चुना है बाजार फिल्म का गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना मीर तकी मीर की, संगीत दिया है खयाम ने। पसंद आप सभी की टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन। यहीं से शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश सक्सेना, रामदास, रमाकांत दुबे, रमेश कठोंदिया, प्रमोद सैनी और सुजीत। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाजार फिल्म से, आवाज थी लता मंगेशकर की, और अब आपको सुनवा रहे हैं भीगी पलकें फिल्म से, एमजी हशमत के बोल। संगीत दिया है जुगल किशोर और तिलक राज ने, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। पसंद आप सभी की। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका, जीविका, सानू कुंभार और अर्चना कुंभार। कोयले वस्ती पुनावले से करिश्मा सोनवणे, अविका सोनवणे, साईशा सोनवणे और अजय सोनवणे। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे भीगी पलकें फिल्म से, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। अब आपको सुनवा रहे हैं बागवान फिल्म से समीर के बोल। संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। पसंद आप सभी की छोटी बलिया तालुका करजत से अहमद भाई, दुखना सदफ जूही इकबाल इमरान अहमद फूलवाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान आसमा परी राबिया और आशु अहमद। इसी गीत के लिए MLB रोड ग्वालियर से फरमाइश प्राप्त हुई है सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या आरव मेधा साक्षी आशीष अनुज विशु छोटू और एस के पप्पी खुराना। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्म से ये गीत। गायक कलाकार थे उदित नारायण और अलका याग्निक। आपकी पसंद के नगमों को लेकर हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों बाद।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी के बोल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म का नाम है अवतार। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार व साथी। पसंद आप सभी की ग्राम पनारी पोस्ट महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर से। परमलाल विश्वकर्मा, दशरथ विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, पूना विश्वकर्मा, आरती विश्वकर्मा, दीपेश विश्वकर्मा, मानवी विश्वकर्मा, हर्षिता विश्वकर्मा एवं समस्त विश्वकर्मा परिवार। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन।

मन चाहे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में सुनवा रहे हैं बड़े दिल वाले फिल्म से मजरूह के बोल। संगीतकार हैं आर डी बर्मन, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार। पसंद आप सभी की बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। गांव राय खाना बठिंडा से परमिंदर सिंह सोनी, करण सोनी, दीपू वीरपाल और कुलदीप सिमू। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी बड़े दिल वाले, आवाज़ थी किशोर कुमार की। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी व्हाट्सएप फरमाइश और पत्र भेजने का। आप अपनी पसंद के नगमों की फरमाइश लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक कार्यक्रम मन चाहे गीत, आकाशवाणी सागर, मध्य प्रदेश, पिन कोड 470001। और हमें व्हाट्सएप पर,

0: फरमाइश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9770432297। इसी के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत से दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: पलों के बाद

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में HMV के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

दलित महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक दलित महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। दलित महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में दलित महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को दलित की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे, तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया, उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।
0: हम स...

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: नहीं।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

0: के मजबूर।
1: सबसे दिलचस्प बात ये है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गी। सुनने वालों को शिफाली कपूर का नमस्कार। सदियों से होते आए हैं हुस्न इश्क के चर्चे, हुस्न की वादियों में पलता है इश्क। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं।

मोहब्बतों में नुमाइश की जरूरत ही कहाँ। ये तो वो जज्बा है जिसमें खामोशी भी गुनगुनाती है। लहराते आंचल की बात न पूछिए, रह

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। जिंदगी इश्क मोहब्बत से जमा होती है। कल तलक सीने से लगाए फिरते थे दिल अपना, तुमने मुस्कुरा के जो देख लिया दिल मेरा न रहा। ये जलवे ये अदाएं तेरी जुबां है जवां मोहब्बत की, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।

फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है, इश्क जब बेहिसाब हो जाए। मोहब्बत की कोई हद कोई सरहद नहीं, कुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी।

दरियाए इश्क तुम जिसमें डूब रहे हैं हम सफीने की तरह। उफ ये लहराते गेसू ये उड़ता आंचल, जी चाहे कि उम्र गुजर जाए।

इन किसाए तले पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया।

0: महकते गीतों के साथ आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत शेफाली कपूर को, नमस्कार।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती, देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है महासटेली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
0: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
0: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेड।